हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026 प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजा

0: डाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:05 हो चुके हैं। समय है आज के विचार का। अंतरात्मा की आवाज, जी हां, इस विषय पर है आज का विचार। आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
2: श्रोताओ, आपने अक्सर सुना होगा कि कई मर्तबा ये शब्द हमारे कानों में पड़ जाता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। वैसे ये जरा कठिन है। मन और बुद्धि के तर्क वितर्क के बीच आत्मा की आवाज पहचानने में, उसे सुनने में कठिनाई तो आएगी ही, लेकिन जरा सा अंतःकरण शुद्ध कर लिया जाए तो ये आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए हम आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। हालांकि जीवन में कई बार आत्मा सारे बंधन और बांध तोड़कर पूरे जोर शोर से अपनी बात कहते हुए सुनाई देती है, लेकिन हम सुनते नहीं। हम उस बात पर ध्यान ही नहीं देते और अपने शोर में खोए रहते हैं। ओशो कहते हैं, कहीं हम मशीन तो नहीं बन गए, हम अपनी ही दिनचर्या से बंधकर जड़ता के शिकार होते जा रहे हैं, हम यांत्रिक होते जाते हैं। इसीलिए ईसा ने कहा है, जो बच्चों जैसे दिल वाले होंगे वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, यानी हम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आत्म जागरण के लिए जिए, आत्म जागरण के लिए मरें, तभी एक सार्थकता आपके जीवन में उतरेगी, अन्यथा हम अंधकार में ही जड़ होकर मर जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, आप बाहर से तो स्थित प्रज्ञ हो गए, मुक्त हो गए, निष्काम हो गए, लेकिन भीतर की क्या स्थिति है? क्या आपके भीतर बुराइयां उठती है? क्या संसार से मोह उठता है? उस साधु ने कहा, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी सोचो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो आदमी बहुत डरा और घर आकर लेट गया। अब क्या जीना? 7 दिन? 7 दिन बाद तो मृत्यु निश्चित है। उसने सब मित्रों रिश्तेदारों को तार आदि कर दिया कि 7 रोज बाद मेरी मृत्यु है, मैं न बचूंगा। सभी मित्रगण मिलने के लिए पहुंच गए। वह लेटा हुआ है, आज 7वां दिन है, 7 दिनों में ही उसका खून सूख गया था। तभी वो साधु भी आ पहुंचा। साधु ने पूछा, बताओ भाई, इन 7 दिनों में कोई बुराई तुम्हारे भीतर उठी? क्या इच्छाएं पैदा हुई? क्या व्यभिचार जागा? इस पर उस आदमी ने कहा, आप भी कमाल करते हैं, इधर मैं मर रहा हूँ और एक मरता हुआ आदमी क्या बुराई करेगा, वो तो अपने लिए दुआएं कर रहा होगा। उस साधु ने कहा, बस यही तुम्हारी बात का उत्तर है जो तुमने मुझसे पूछी थी। मनुष्य को

0: मृत्यु के घटने का पता चल जाता है तो फिर बुराइयां छूट जाती है, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मैंने तो तुम्हें ज्ञान देने के लिए 7 दिन का बहाना बनाया था, उठो तुम अभी नहीं मरने वाले हो। मित्रों, ये कहानी हमारे सामने एक स्थिति खड़ी करती है। अगर वास्तव में हमें संसार के छूट जाने का बोध हो जाए तो सारा मोह, बुराइयाँ, लालच, निंदा सब छूट जाते हैं। फिर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और परमात्मा की शरण खोजते हैं। यहीं से हमारा असली जीवन आरंभ होता है।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार कार्यक्रम। आज के विचार में अंतरात्मा की आवाज़, इस विषय पर आपने सुना श्री प्रमोद कुमार शर्मा को। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं नितिन मुकेश और अनुपमा देशपांडे के इस भजन के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में हरिओम सरन और साथियों के साथ ही भजन आपने सुना। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, स्वर है चंदन दास का।

चंदन दास की इस प्रस्तुति के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:30 बजने को हैं। समय है रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 85 के पहले छंद से दोहा संख्या 87 तक का सस्वर पाठ।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: संगु।
1: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण का। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए हम लेकर आएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर जानकारी देंगे श्रीमती मुक्ता जैन। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम में होगी वार्ता ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर निशा चौधरी। प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेगा की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। साथ ही साथ संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और राष्ट्रीय चाय दिवस जैसे विषयों पर भी होगी चर्चा। फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद हमारी पहली सभा में आप सुबह 7:30, तत्पश्चात सुबह 10 से लेकर दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 ले सकेंगे। जी हां, ये सभी समय हैं फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत के। सुबह 8:30 होगा कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे कविता पाठ। कवि रहेंगे श्री आशीष पुरोहित। प्रातः 8:45 पर आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। सुबह 9:10 का समय रहेगा लोक संगीत का। सुबह 9:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम उमंग NCERT। आकाशवाणी जयपुर से दिन में 12:10 पर आप सिंधी कार्यक्रम सुन सकेंगे। दोपहर 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का। चर्चा रहेगी कुटीर उद्योगों की सफलता की कहानी, जैव विविधता से कीटों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राजीव गांधी पुण्यतिथि जैसे विषयों पर। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजस्थानी कहानी सांचो सुपनो। कहानीकार होंगी श्रीमती अनुपम पांडे। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में शाम 4:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:05 का। आज की बात रहेगी जीवन जीना एक कला है। लघु जानकारियां होंगी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जैसे विषयों पर। आकाशवाणी जयपुर से शाम 5:30 झीणेरी बातिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता। भेड़ व बकरियों की प्रमुख बीमारियां, बचाव व रोकथाम विषय पर डॉक्टर मनोहर सैन सहायक आचार्य वेटनरी कॉलेज बीकानेर से बातचीत होगी। सहभागिता रहेगी श्री राम सहाय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी की। प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। हमारी दूसरी सभा में फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप शाम 6:05 पर ले सकेंगे। तत्पश्चात रात्रि 8:00 का समय, रात्रि 9:15 का समय और रात्रि 10:30 का समय रहेगा।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा रहेगी ग्रीष्मकालीन जुताई, सहभागी बीज उत्पादन, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जल स्वावलंबी बने हर गांव जैसे विषयों पर। रात्रि 7:45 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। लोक संगीत का आनंद हमारी दूसरी सभा में रात्रि 8:30 आप ले सकेंगे। रात्रि 9:30 कार्यक्रम सुगम संगीत में होगी गजलें। आकाशवाणी जयपुर से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राजस्थान दर्शन। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो चुके हैं। समय है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में सुनिए गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर जानकारी। जानकारी दे रही हैं श्रीमती मुक्ता जैन।
1: किसान भैया राम राम। आज आपा बात करा गर्मी में पशुआरी देखभाल। ठंडी जलवायु दुधारू पशुआरे लिए वरदान सिद्ध हुई है। अगर जानवर लगातार धूप रे संपर्क में रहे तो बिंगे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़े हैं। तापमान बढ़ने से शरीर रो तापमान बढ़तो रहे है। चारे री मात्रा कम हो जावे और आमतौर पर गर्मिया रे दौरान हरे चारे री कमी रे सागे सागे भैंसा में गर्मी रे प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता कारण पशुओं रे दूध उत्पादन में भी कमी आ जावे है। प्रजनन गतिविधि पशु रे अन्य सभी शारीरिक कार्य प्रभावित करे है। गर्मियों में पशुओं ने कम चारो, कम एर सूखो चारो, कम पानी, अत्यधिक गर्मी रो सामनो भी करनो पड़े है। जीवित रहने रे वास्ते बिने आवश्यक कार्य जिया की शारीरिक कार्य है शरीर पर बहुत अधिक तनाव डाले है। इन प्रकार प्रजनन क्षमता ने रोकण एर क्षीण करे है। मार्च सु लेट जून री अवधि रे दौरान वातावरण में तापमान बहुत बढ़ जावे जिसु जानवर थक जाया करे है। प्राकृतिक गर्भाधान सु बाजपन री संभावना बढ़ जावे है और मुख्य रूप सु शुक्राणु री गुणवत्ता भी कम हो जावे है। गर्मी रे मौसम में गर्भवती पशुआ री देखभाल घनी जरूरी है क्योंकि नवजात बछड़े री प्रजनन क्षमता बींगे गर्भावस्था सु मिलन वाले पोषण पर निर्भर करया करे है। शक्कर ए विदेशी जानवर अत्यधिक गर्मी ने सहन को नहीं कर सके है। इन्हीं प्रकार इन्हीं अवधि में पशुओं ने सुबह और देर दोपहर में चराने ले जानो और दोपहर री सूखी गर्मी में बिने शेड या छाया में बिंग वास्ते बनानो चाहिए है। बिने भरपूर और साफ पानी भी देनो चाहिए है। गर्मी में मौसम में पशुओं में शरीर और तापमान सामान्य बनाए रखन भी घनी दिक्कतें आया करे है। गर्मी में पशुओं ने स्वस्थ रखने वास्ते बने उत्पादन स्तर ने सामान्य बनाए रखने वास्ते पशुआरी घनी देखभाल की जरूरत हुआ करे है। गर्मी रे मायने शरीर और तापमान गर्मी में सामान्य रूप से पशुआरी शारीरिक क्रिया में बदलाव देखने ने मिलिया करे है। गर्मी रे मौसम में पशुआरी श्वसन गति बढ़ जाया करे है। पशु हापण लाग जाए और मुँह सु लार गिरन लाग जाया करे है। पशुओं रे शरीर में बायोकार्बोनेट आयनारी कमी है। रक्त रो PHN में वृद्धि हो जाया करे है। पशुओं रे ह्यूमन में भोज्य पदार्थ खिसकने री गति भी कम हो जाया करे है जिससे पाचन जिकी बिंगी पाचन री क्रिया है बाबी कम हो जाया करे है। त्वचा री ऊपरी सतह पर रक्त रो प्रभाव बढ़ जावे है जिंगे कारण भी में उत्तका ने रक्त प्रभाव कम हो जाया करे है। पशुओं में पानी री आवश्यकता भी बढ़ जाया करे है। तो किसान भाई लोगा पशुओं ने दिन रे समय में सीधी धूप से बचावनो चाहिए है और बिने बारे चराण वास्ते नहीं ले जावनो चाहिए। हमेशा पशुओं ने बांधन रे वास्ते छायादार और हवादार स्थान रो अपने चयन करनो चाहिए। पशुओं रे के पीने रे पानी हमेशा साफ होनो चाहिए और पशुओं ने हरो चारो खिलावनो चाहिए। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आवे तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करनो चाहिए। यदि संभव हो तो सके तो डेयरी शेड में भी दिन के समय कूलर पंखा आदि रो भी इस्तेमाल आपा कर सका हाँ। पशुआ

अपने संतुलित आहार देनो चाहिए है। अति गर्मी री स्थिति में पशुओं रे शरीर पर पानी रो छिड़काव भी कर देनो चाहिए। गाया री तुलना में भैंसा में गर्मी अधिक भैंसा अधिक गर्मी से पीड़ित हुआ करे है। अगर कृत्रिम गर्भाधान करने वालों है तो सुबह और शाम रोही समय उपयुक्त रहा करे है। भैंसा पर गिरने रे लिए पानी रा फवारा री व्यवस्था करनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो दिन में 3 या 4 बार भी ने पानी सु धोनो चाहिए। दोपहर रे समय पशुओं ने खलियान में बांध देनो चाहिए।

0: हो सके तो टाट या पर्दा लटकार गौशाला में किनारा पर आपने पानी रो भी छिड़काव कर देनो चाहिए। जानवरों ने पीने के लिए ठंडे पानी देनो चाहिए, अभी में नमक और गुड़ रेग सागे बेहतर हुए वो। इन तरह प्रबंध सू आपा गर्मियों में कम दूध उत्पादन ने बढ़ावा सका हाँ। इनके अलावा पशुओं ने दिन भर के लिए आवश्यक चारों एक बार में खिलाने की बजाय बने बार बार बांट कर तीन सूलेर चार बार खिला देनो चाहिए।
1: ये कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:50 हो चुके हैं। समय है लोक भजन का। कलाकार हैं पुष्पा सैनी।

0: आप सुन रहे थे लोक भजन, कलाकार थी पुष्पा सैनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतङ्कवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनंदनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़

0: तटीय आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 7 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुप्रभात का।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंच जाती है, और दिल से ये बात बयां होती है कभी अल्फाजों में, कभी इशारों में, कभी बगैर कुछ कहे भी दिल से दिल तक संवाद हो ही जाता है। जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं आज। चाहे हम कितने भी अलग हों, एक दूसरे से कितने भी जुदा जुदा दिखाई दें, फिर भी जब दिल जुड़ने पर आमादा होता है तो हम एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं हमारा इशारा। आज हम बात कर रहे हैं संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के विश्व दिवस के बारे में। जी हाँ, हर साल आज ही के दिन यानी 21 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृतियों की विविधता का जश्न मनाना और शांति, समावेश तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद के महत्व को रेखांकित करना है। जी हाँ श्रोताओं, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि विविध संस्कृतियों का सम्मान करके ही हम एक बेहतर, एकजुट और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दरअसल यूनेस्को द्वारा 2001 में सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की थी। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के अधिकांश संघर्ष उन देशों में हुए हैं जहां अंतर सांस्कृतिक संवाद का स्तर कम होता है। इसीलिए ये दिवस समुदायों और देशों के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। श्रोताओं, ये दिन लोगों को एक दूसरे के धर्म, भाषा, कला, परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं श्रोताओं, आज के दिन का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है। संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र वैश्विक विकास का एक बहुत बड़ा इंजन है। श्रोताओं, ये क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 3.1% का योगदान देता है। दुनिया भर में इस क्षेत्र में 4.8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। तो देखा श्रोताओं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि चाहे हम किसी भी किस्म की विविधताओं से एक दूसरे को जानते हों, पहचानते हों, कितने ही एक दूसरे से अलग हों, चाहे भारतवर्ष की बात हो, चाहे पूरे विश्व की बात हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक विभिन्नताएं हमें एक दूसरे से पृथक करती हों, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां एक दूसरे से अलग हों, चाहे हमारी भाषा, चाहे हमारे वेशभूषा, चाहे हमारे धर्म, हम कहीं से भी कैसे भी एक दूसरे से जुदा जुदा अलग अलग क्यों ना हों, हमें जोड़ता है संवाद। जी हाँ, हमें संवाद को हमेशा कायम रखना चाहिए। यही संवाद विकास का आधार बनता है। जब भाषा, बोली, धर्म, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हों, तब भी संवाद काम करता है श्रोताओं, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे। और ये संवाद संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंचा देता है। तो चलिए इस दिन को याद करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, इस चिलचिलाती गर्मी में गर्मी की बात महत्वपूर्ण हो जाती है अगर वो जुड़ी हो हमारे स्वास्थ्य और पोषण से। जी हाँ, कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर निशा चौधरी, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजनकर्ता हैं श्री अमित सिंह।
5: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और सामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य एवं पोषण। एक प्रसिद्ध कहावत, पहला सुख निरोगी काया, यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। और जब बात ग्रीष्म ऋतु की हो, तब स्वास्थ्य की रक्षा और संतुलित पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत जैसे विविध जलवायु वाले देश में हर ऋतु अपने साथ कुछ विशेषताएं और कुछ चुनौतियां लेकर आती है। उन्हीं ऋतुओं में से एक है ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम सामान्यतः गर्मी का मौसम कहते हैं। यह मौसम जहां एक ओर कई तरह के रसीले फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, उसके साथ साथ छुट्टियां और उत्साह लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर तेज धूप, गर्म हवाएं, लू, अत्यधिक पसीना, थकान, निर्जलीकरण और कई स्वास्थ्य समस्याएं भी साथ लाता है। गर्मी बढ़ते ही हमारे शरीर लगातार स्वयं को संतुलित रखने का प्रयास करता है। गर्मी में शरीर से पसीना निकलता है ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके, लेकिन इस प्रक्रिया में शरीर से पानी, नमक और आवश्यक खनिज तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। यदि इनकी पूर्ति समय पर न की जाए तो व्यक्ति में कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, भूख न लगना और कभी कभी गंभीर स्थिति जैसे लू लगना आदि का शिकार हो सकता है। ऐसे समय में यह समझना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही सही पोषण लेना ही स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रिय श्रोतागण, हमारे भारतीय शास्त्रों और आयुर्वेद में भी ऋतु के अनुसार आहार विहार बदलने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद कहता है ऋतुचर्या पालनम स्वास्थ्यम मूलम, अर्थात ऋतु के अनुसार दिनचर्या और आहार का पालन करना ही अच्छे स्वास्थ्य

का आधार है। ग्रीष्म ऋतु में शरीर को ठंडक देने वाले हल्के सुपाच्य और जल से भरपूर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रिय श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। और यह तभी संभव है जब हम अपने भोजन, पानी, जीवन शैली और पर्यावरण चारों की ओर ध्यान दें। इसके साथ साथ स्वच्छता, पर्याप्त आराम और धूप से बचाव भी उतना ही आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हम क्रमबद्ध रूप से कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे पानी और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन का महत्व, ग्रीष्म ऋतु में संतुलित व पौष्टिक आहार का क्या महत्व है, कौन से खाद्य पदार्थ अपनाने चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ से हमें बचना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण शरीर से अत्यंत पसीना निकलता है। पसीने के साथ साथ शरीर से पानी तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि भी बाहर निकलते हैं। इसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, थकान, भूख कम लगना जैसी समस्याएं होती हैं। यदि शरीर में पानी की कमी अत्यधिक हो जाए तो व्यक्ति को लू लग सकती है तथा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त तथा त्वचा संबंधी समस्याएं, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन आदि। इससे बचाव के लिए सही पोषण आवश्यक है। इसी क्रम में हम संतुलित आहार का महत्व भी समझते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पानी आदि उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। गर्मी में ऐसा भोजन ले जो हल्का हो, आसानी से पच जाए, शरीर को ठंडक दे, पानी की कमी को पूरा करे। इसके साथ साथ तला भुना भोजन कम लें, अधिक मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, बासी भोजन का उपयोग न करें, अधिक तेल व घी का सेवन न करें, बार बार थोड़ा भोजन लें। गर्मी में लाभकारी खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे पानी से भरपूर फलों में तरबूज शरीर को ठंडक देता है, पानी की कमी को पूरा करता है, खरबूजा विटामिन ए व विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, खीरा व ककड़ी शरीर को हाइड्रेट रखते हैं तथा पाचन में भी सहायक होता है, फलों का राजा आम जो विटामिन ए व ऊर्जा से भरपूर होता है, नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है, पेय पदार्थों में नींबू पानी शरीर में पानी व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है, छाछ पाचन के लिए लाभकारी होती है, शरीर को ठंडक देती है, लस्सी ऊर्जा प्रदान करती है, नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसके साथ साथ सत्तू का शरबत ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है जो कि ऊर्जा व ठंडक दोनों देता है। हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, परवल, टिंडा सभी हल्की व पौष्टिक होती है। इन सब के साथ साथ पानी का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी जीवन का आधार है। गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलने के कारण पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास व अधिक गर्मी में 12 गिलास तक पानी का सेवन करना चाहिए। बाहर जाते समय पानी हमेशा साथ में रखना चाहिए। ORS का प्रयोग करना चाहिए। अधिक देर धूप में नहीं रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें बच्चों व किशोरों के पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में बच्चों को ज्यादा देर बाहर न खेलने दें। बच्चों को ताजे फल, दही, छाछ, घर का बना जूस, नारियल पानी आदि देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम व जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मियों में हमें गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों की भी विशेष देखभाल करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अधिक पानी व पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है।
उन्हीं के आहार में दूध, दही, फल, हरी सब्जियां, दालें आदि देना चाहिए।

0: बुजुर्गों में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन देना चाहिए। भोजन हल्का व सुपाच्य हो, पर्याप्त पानी व धूप से बचाव करना चाहिए। गर्मी में लू की मुख्य समस्या देखने को मिलती है, इससे बचाव के लिए दोपहर 12 से 4 बजे धूप में ना निकलें, सूती कपड़े पहनें, सिर ढक कर बाहर जाएं, पानी पीते रहना चाहिए। गर्मियों में हमें भोजन की स्वच्छता व सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ताज़ा भोजन खाएं, खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, खुले खाद्य पदार्थ ना खाएं, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, हल्का व्यायाम करें, योगा व प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम रखें, प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन करें। प्रिय श्रोतागण, ग्रीष्म ऋतु हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही पोषण अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के मौसम में संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, स्वच्छता व उचित दिनचर्या अपनाकर हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आइए इस गर्मी में हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार व समाज को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। जय भारत।
1: कार्यक्रम में ये थी वार्ता ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर। वार्ताकार थी डॉक्टर निशा चौधरी, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह। सही है श्रोताओं, गर्मी में हमें ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। ये देखभाल सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि हमें मानसिक ठंडक का भी इंतज़ाम बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए सहज तरीका है कि हम अपने शौक के काम करें जो हमें अंदर तक सुकून पहुँचाएँ, और साथ ही साथ अगर इसमें संगीत का भी मज़ा मिल जाए तो फिर गर्मियां हमें सुकून देती हैं। कार्यक्रम में इस गीत में जैसे मूर्तिकार अपनी प्रेमी को याद करते हुए मूर्ति बना रहा है, इसी तरह से हम भी अगर अपने किसी शौक को गर्मी में आराम से, इत्मीनान से, संगीत के साथ अपने जीवन में जोड़ें तो हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक लाभ भी होगा श्रोताओं।

0: श्रोताओं, आज की तारीख दो और वजहों से भी ख़ास है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय की उत्पत्ति 5000 से भी अधिक पुरानी है श्रोताओं, लेकिन स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विकास में इसका योगदान आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। चाय की खेती वर्तमान में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में होती है और इससे 13 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें छोटे किसान और उनके परिवार शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए चाय के उद्योग पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी आज का दिन 21 मई चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व के जश्न मनाने का अवसर है श्रोताओं। साथ ही इसके उत्पादन को खेत से प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी, ताकि लोगों, संस्कृतियों और पर्यावरण के लिए इसके लाभ पीढ़ियों तक बने रह सकें। विश्व भर में चाय के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के साथ साथ विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला किया था श्रोताओं। इसी के साथ साथ आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल भारत में 21 मई को मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी आज ही के दिन 21 मई 1991 को एक हमले में हत्या कर दी गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना, उनके बीच जागरूकता फैलाना और देश में शांति, मानवता और एकता का संदेश पहुंचाना है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शपथ ली जाती है। देश भर में सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और व्याख्यानों का आयोजन करके लोगों को आतंकवाद के खतरों के प्रति सचेत किया जाता है। तो श्रोताओं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम मन में सिर्फ एक ही बात को स्मरण रखें कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब इस एक ही देश के निवासी हैं और हम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा आपसी प्रेम और भाईचारा है। इसी भाईचारे को याद करते हुए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं।
1: नफरत की

हम सभी का प्रेम आपस में बना रहे और हम सब आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर डटे रहें, इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए निदा फाजली की लिखी गज़ल, जिसे उषा खन्ना ने दिया है संगीत, मनहर की है आवाज़ और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म धनवान से साहिर लुधियानवी का लिखा गीत जिसे संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में फिल्म कभी कभी से साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे संगीत

से ये गीत आपने सुना। बोल जावेद अख्तर के थे, संगीत था शिव हरी का। आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और बाबुला मेहता को। फिल्म चांदनी से गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं एक बार फिर से शिव हरी।

फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर।

0: सुबह के 8 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
4: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21

0: जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने

0: के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:30 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम सौरभ का। कार्यक्रम में आज है कविता पाठ। कवि हैं श्री आशीष पुरोहित।
1: मारी पहली कविता रोसीरे नाम है काई लेगी। अब काले अबेरण पाछली हवा फगत पानी भरियोड़ा बादली जनी लेगी ही पाछा आ साथे लेगी ही नाथे काकेरो काकी सूं खड़ो करते पाण छात पक्की कराने रो कोल आ साथे लेगी ही बंसी भाई जी री मोबण बेटी री चंवरी री अगन अब के ही परणीज राई लाधुरी जोड़ायत री मेहंदीरी मैक बडोड़ी मारी किशन येरी भणाई सारू अडाणे धरियोड़ी टूम राजियरी दू ढोवण सारू किस्ता पर लियोड़ी मोटरसाइकिल और बापू जी रे श्यांत हुया पछे औसर करण सारू साहूकार कने धरियोड़ा मारी पांती री जमीन रा कागज भी पण मौसम विभाग बतावे के पाछली हवा वहाँ फगत पानी भरियोड़ा बादल उडाई ने लेगी। मारी अगली कविता रो शीर्षक है पण बापू। माँ जने कणई बडोड़े भाई जी पर बढ़ती रीसा मारती कूटती तो थे ही तो कहता हा आखे दिन मत झक्या कर और हाथ मत उठाया कर इन पर ओ बड़ो हुए इन्हें प्रेम सु समझा देखो भाई जी अबे कितना साना हुई गया कोई चीज याद नहीं दिनानी पड़े खेत रे काम सु लेर बैंक रो ब्याज भरने तकरा सेंग काम आजकल बाने याद नहीं दिलाना पड़े गाम गवाड़ में मंडियोड़े किणी एडे मेढे सूं रिश्तेदारी री कान मोकान तक सब आपो आप ही संभाल लेवे उल्टेरा बे अब माँ ने याद दिरावे टेमो टेम दवाई लेवनी मने भी पूछे भणाई बाबत और कई बार तो मोड़े ताई जागर बनाए देवे मारी विज्ञान री कॉपी रा चित्राम भी और हाँ सोती भगत आप संभाल आवे बार ले आडेरी सांकड़ फण बापू थे भी तो प्रेम सु समझाए सकता हानी बाने बाने श्याणा करण वास्ते थारो दुनिया छोड़नो काई जरूरी हो। अगली कविता रो सिरे नाम है कविता रा कणुका। कविता कविता फकत कलम सु कागज पर नहीं मांडी जे कविता फकत कलम सु कागज पर नहीं मांडी सके बातो हुई सके सियाले सु पहली बलिते वास्ते छांगण करने भगत नीड आली डाली छोड़न सु भी बाहुई सके नक्का मोड़ती भगत टीटूडीरा इंडा कसिए सु ठावी जगह छोड़ने सु भी बाहुई सके रोही में आडी पड़ियोड़ी खेजड़ी ने डोकेरो सायरो देर सीधी करण सु भी कविता फकत कलम सु कागज पर ही नहीं मांडी सके। मारी अगली कविता रो शीर्षक है रेत्रो हेत। आ रेत प्रेम करनो जाने आ रेत प्रेम करनो जाने जनेस तो आ कदई डील पर आपरो इधिकार नहीं जमावे आ रेत प्रेम करनो जाने जनेस तो आ कदई डील पर आपरो इधिकार नहीं जमावे अपून रे हड़के सिख झोंके सू छाछड़ी इज्र चिप जावे डील सू आ पून रे हड़के सिख झोंके सू छाछड़ी इज्र चिप जावे डील सू और उतर भी जावे हड़को सीख रुखास होता ही पणा नहीं जाने की कर उतर जावे इति उंडी और कालज धोरा पर बनाए देवे आपरा पक्का खोज जका बने एनाण आवण वाली पीढ़िया ने प्रेम समझावण रा। मारी अगली कविता है थारी ओल्यू। थारी ओल्यू थारी ओल्यू मारे मायले थार में फोगरी जड़ जूं थारी ओल्यू मारे मायले थार में फोगरी जड़ जूं आडी तिरछी धस्ती उंडी मायले अंधारे रे बावजूद जोई लिवे मारी आंख्यारी कोरारो दो बूंद खारो पानी थारी ओल्यू मारे मायले थार में फोगरी जड़ जूं आडी तिरछी धस्ती उंडी मायले अंधारे रे बावजूद जोई लिवे मारी आंख्यारी कोरारो दो बूंद खारो पानी भगत री ताती लूसूं खुद ने बचायर हरो राखण सारू। अगली कविता है काची पाकी

ओ जगत एक हारो है, ओ आखो जगत एक हारो है, जिके माय भो भर बणार, मिनखरी देह ने बी माथे टिकाई जे बीरी सुपनारी देगची। ओ आखो जगत एक हारो है, जिके माय भो भर बणार, मिनखरी देह ने बी माथे टिकाई जे बीरे सुपनारी देगची। अर बी देगची में भोर सु लेर सिंझाताई खद बदी जे काची पाकी जिया जून। अगली कविता रो शीर्षक है क्यों बदल जावती माँ। मारी माँ खुद तो मने सुनावती कहानियां महापुरखारी, पढ़ावती ईमानदारी रा पाठ। मारी माँ खुद तो मने सुनावती कहानियां महापुरखारी, पढ़ावती ईमानदारी रा पाठ, समझावती मिलर बांट बरोबरी सुरेवणो। मारी माँ खुद तो मने सुनावती कहानियां महापुरखारी, पढ़ावती ईमानदारी रा पाठ, समझावती मिल बांट बरोबरी सु रेवणो, पण कदे ही मारे समझ में नहीं आई के खुद पर पढ़ते ही क्यों बदल जावती माँ, क्यों हमेश मारे वास्ते लुकार राखती मीठी पूड़ी साल में, क्यों हमेश मारे चूर मेरो पिंडियो बड्डो हूँ तो बडोड़े भाई जी और बाई सूँ, क्यों बापू जी सू बचावण खातर बोलती बा झूठ, मैं कदे ही नहीं समझ सक्यो माँ क्यों बदल जावती आप री बारी री भगत। मारी अगली कविता है अंधारो। अंधारो जके रे नाम सुईज माथे माए पड़े सड़, अंधारो जके रे नाम सुईज माथे माए पड़े सड़, आधी हुई जावे हिम्मत और मौली पड़ जावे पकड़। अंधारो जके रे नाम सुईज माथे माए पड़े सड़, आधी हुई जावे हिम्मत और मौली पड़ जावे पकड़। मिनख ने अब खो लागे, मिनख ने अब खो लागे अंधारा रे इण भाकर ने भांगणो, पण ओ अंधारो इच है जको हुए उद्गम किणी रोशनी रे झरने रो। ओ अंधारो इच है जको बतावे के थोड़े घणे भगत में इच अठे भी मंडेला चाननेरा एनाण। मारी अगली कविता रो शीर्षक है एनाण। रोही में खड़ी खेजड़ी रे पेडे माथे पान रो पत्तो बनार लिखियोड़ा नाव। रोही में खड़ी खेजड़ी रे पेडे माथे पान रो पत्तो बनार लिखियोड़ा नाव, कॉलेज री किताबा रा मुड़ियोड़ा पाना में दबियोड़ा गुलाब, और लाल स्याही सू लिखियोड़ा पीला पड़ियोड़ा पाना। बोदो मफलर और कोई तांत री बाड़ी पेटिया में दाब राखियोड़ा ऐसे जतन प्रेम रा एनाण बाजे। रोही में खड़ी खेजरी रे पैदा मठे पान रो पत्तो बनार लिखियोड़ा नाव, कॉलेज री किताबा रा मुड़ियोड़ा पाना में दबियोड़ा गुलाब, और लाल स्याही सू लिखियोड़ा पीला पड़ियोड़ा पाना। बोदो मफलर और कोई तांत री बाड़ी पेटिया में दाब राखियोड़ा ऐसे जतन प्रेम रा एनाण बाजे। पण खेत सू घरे बावड़ता रोही में बीरे माथे रो भारियो आप उठार गांवरी काकड़ तक पुगावणो, भट्टे पर सागे मजूरी करता थका ठेकेदार रो आँख टड़ाव कर बीरे पांतीरी 150 इंटिया आप इज ट्राली में सरकाया, पछे हाथा में पड़िया छाला और मोढेरी टाकरा श्याती कदेई मानी जेला एनाण प्रेमरा। मारी अगली कविता रो शीर्षक है कविता खातर। कविता खातर खाली पेट और बंद मुट्ठी सुई घणो जरूरी हुए भरियोड़ो मन और खुली आँखियाँ। कविता खातर खाली पेट और बंद मुट्ठी सुईच घणो जरूरी हुए भरियोड़ो मन और खुली आँखियाँ। मारी अगली कविता रो शीर्षक है चेते आएगी माँ। आज चाण चके स्कूल में, आज चाण चके स्कूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन पढ़ता थका मने माँ चेते आएगी। आज चाण चके स्कूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन पढ़ता थका मने माँ चेता आएगी। माँ भी तो इलेक्ट्रॉन दाई दिनू के बाखड़ बुहार ने सू शुरू हुए राखुंडे सू लेर पलिंडे ताई। माँ भी तो इलेक्ट्रॉन दाई दिनू के बाखड़ बुहार ने सू शुरू हुए राखुंडे सू लेर पलिंडे ताई। घर नाव रे नाभिक रे चारू मेर घर रे चौबीते माए चक्कर इस तो काटती रहे। अर्थात इन्हीं चक्कर में आपरी ऊर माने करती खीण, एक दिन मिल जासी इन्हीं नाभिक में। मारी अगली कविता रो शीर्षक है बीच। बीच बधे फर्क नहीं करे अच्छी माड़ी और मूंगी सस्ती जगा रो। बीच बधे फर्क नहीं करे अच्छी माड़ी और मूंगी सस्ती जगया रो। बीज रो स्वभाव निवणो सील कानी, बीज रो स्वभाव निवणो सील कानी,

0: और बिसराए देवणो आपो आपने। हमारी अगली कविता रो शीर्षक है आखर। आखर आखर तो हुए निरपेख, आखर आखर तो हुए निरपेख, नी पड़ू से किणी रोवते ने। आखर आखर तो हुए निरपेख, नी पड़ू से किणी रोवते ने, और ना ही देवे किणी ने घाव। आ तो भावारी अमर बेल है, आ तो भावारी अमर बेल है, जकी बनावे आखरा ने, कदे घाव तो कदे मलम। आखर आखर तो हुए निरपेख, नी पड़ू से किणी रोवते ने, और ना ही देवे किणी ने घाव। आ तो भावारी अमर बेल है, जकी बनावे आखरा ने, कदे घाव तो कदे मलम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में था कविता पाठ, कवि थे श्री आशीष पुरोहित। लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज सुनिए कार्यक्रम में ललित कुमार व्यास को।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थे ललित कुमार व्यास। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं आकाशवाणी जयपुर से। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम

0: को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोडमैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस

0: ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाओ, भीलड़ी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, जयपुर गांधीनगर स्टेशन, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां एआई तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। समय है लोक संगीत का। कलाकार हैं अल्लाह जिलाई बाई।

समय बड़ा बलवान है। समय व्यर्थ ना गवाएं। समय का भरपूर इस्तेमाल करें। गया समय कभी लौट कर नहीं आता। समय राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
0: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को

0: कृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला।

उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।

0: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ, एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?

0: अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
0: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।

0: और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और इसके

0: तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
1: अच्छा चल अक्कू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
2: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
3: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
4: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
1: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
2: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
1: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
4: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
2: वो उसे काटने लगे।
0: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
4: अच्छा ठीक है,
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
2: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
3: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे अटकू मटकू,
2: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
4: पेड़ हमारे
1: दोस्त हैं।
4: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं, समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म हिंदी मीडियम से, आवाज़ें गुरु रंधावा और अर्जुन की हैं। गीत को बोल दिए हैं अर्जुन ने और संगीत है रजत नागपाल का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खां और आशीष कौर की आवाज़ों में तनिष्क बागची का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और फिल्म का नाम है सिम्बा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा

आकाशवाणी बीकानेर की ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। अखिल सचदेवा और मंशिल गुजराल की आवाज़ों में सुनिए अगला गीत। शब्बीर अहमद ने गीत को बोल दिए हैं, संगीतकार अखिल सचदेवा हैं। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए सुनिए, फिल्म का नाम है लुका छुपी। आवाज़ अखिल सचदेवा की है, साथ ही आवाज़ आप धानवी की सुनेंगे। कुणाल वर्मा ने गीत को लिखा है और अभिजीत वगानी का है संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से फिल्म संगीत। जॉली LLB 2 से सुनिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार और आलम खान की आवाजों में अगला गीत। साथ ही आवाजें आप डब्बू मलिक और ऐश्वर्या मजुमदार की सुनेंगे। गीत को बोल दिए हैं कुमार ने, उजैर जसवाल का है संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। और अब आइए सुनते हैं फिल्म एनिमल का ये गीत। इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा ने। गीत को लिखा है शेखर ने, संगीत से सवारा है विशाल मिश्रा ने।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 11 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत भूले बिसरे गीत।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म सुजाता से, आवाज दी थी तलत महमूद ने, संगीत से सवारा था एसडी बर्मन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है जान निसार अख्तर ने, संगीत से सवारा है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत, और अब आइए सुनते हैं येसुदास को फिल्म नैया में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: तुम सा नहीं देखा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।
1: देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम।

तुम्हें चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम्हें चलोगे आत्मलोके रूठ के हम

0: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी
0: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को। संगीत दिया है SD बर्मन ने, इस गीत को गाया है गीता दत्त ने और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है प्यासा।

0: ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तारों का ही निशान।
1: आइए सुनते हैं फिल्म सगाई का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

0: इस गीत को हमने लिया था फिल्म रंगोली से, आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव

0: प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12:05 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। दिन में 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कुटीर उद्योगों की सफलता की कहानी, जैव विविधता से कीटों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राजीव गांधी पुण्यतिथि, राजस्थानी कहानी, सांचो सुपनों। कहानीकार रहेंगी श्रीमती अनुपम पांडे। साथ ही रसोई से व्यंजन बनाने की विधि और कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। दिन में 4:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आज की बात का विषय रहेगा जीवन जीना एक कला है। साथ ही दी जाएगी लघु जानकारी, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राजीव गांधी पुण्यतिथि। साथ ही रोजगार समाचार के साथ होगा क्विज टाइम और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत।

स्पॉन्सरशिप राजूवास कार्यक्रम धीनेरी बातें आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय रहेगा भेड़ व बकरियों की प्रमुख बीमारियां, बचाव व रोकथाम विषय पर डॉक्टर मनोहर सेन सहायक आचार्य वेटनरी कॉलेज बीकानेर से बातचीत करेंगे श्री राम साई हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह का। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:40। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा का विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन जुताई, सहभागी बीज उत्पादन, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जल स्वावलंबी बने हर गांव, मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे चंद गजलें। राजस्थान दर्शन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

ये थी हमारे आज शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सिंधी कार्यक्रम सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से।

0: सबनी बुधनड़न के दीपिका खानचंदानी जो नमस्कार तमा सबनी जो स्वागत है अजो के सिंधी प्रोग्राम में साथियों अज जे प्रोग्राम में तमा बुधंदा वार्ता तेखा सिवाय चर्चा कंदासी डीह विशेष ते गड़गड़ आनंद वठंदासी कुछ गीतन जो त अजो सबनी का पहरियो बुधू ही वार्ता वार्ता जो उन्वान है सेवा जी अहमियत ए वार्ताकार आहिन सुनीता राजपाल
1: असाजे जीवन में सेवा जी तमाम घणी अहमियत आहे सेवा करण सा इंसान में निवड़त थी अचे सेवा उहो ही करे सगे थो जेको बे जे दुख दर्द के पहेंजो समझे ए पहेंजो पान विजाए करे हुन जी तकलीफ के दूर करण जी कोशिश करे समाज में आम मानव जो जीवन जो कमकार फकत पहेंजे पान ताई ही सीमित हुंदो आहे आम इंसान हर कम में फकत पहेंजो सुख ए फायदो ही दिसंदो आहे हुन जे लाए पहेंजे पान ए परिवार लाए सुख सुविधा जा साधन जुटायण ही काफी थींदा आहिन ब्या मानू कह भी हालत में रहन उनके हिन गाल जी घणी परवाह न थींदी आहे अहिड़ी संकुचित सोच वारन जी रीति नीति अहिड़े मूजिब ही थींदी आहे पर जडे इंसान जी समझ जो दायरो वडो थिए थो तडे उहो फकत पहेंजे बारे में न सोचे करे बेन जे बारे में भी सोचे थो हुन जे मन में बेन लाए कुछ करण जी उमंग जागे थी ए उहो सेवा जे रस्ते ते अगते पेर वधाए थो इंसान जी अंदरूनी समझ जो जिए जिए विकास थिए थो हुन जे मन में सेवा करण जी इच्छा भी वधे थी ए हू सभिनी जे सुख दुख जी चिंता करण

लगे थो ऐं ॿियनि जो ध्यानु बि रखणु लॻे थो। फ़क़ति पंहिंजे ई ख़्वाहिशुनि खे पूरो करण में जेको आनंदु मिले थो, हुन खां कई गुना आनंद ऐं आत्मसंतोष ॿियनि जी सेवा करण वारनि खे मिले थो। तुलसीदास बि चयो आहे त परहित धर्म सरस सुख नाहे कोई। मानुष जनम खे खिन भंगुर चयो वियो आहे ऐं संतन महात्माउनि हिन जीवन जी सार्थकता सेवा धर्म जी साधना में ही ॿुधाई आहे। असां अगरि इतिहास जे सुफ़नि खे पलटे ॾिसूं त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु साफ़ थी ॾिसजे त जंहिं बि पंहिंजे जीवन में सेवा जी अहमियत खे सम्झी करे ॿियनि जे जीवन स्तर खे सुधारण लाइ कोशिशि कई, समाज उन्हनि महापुरुषनि खे घणो मान ऐं आदर ॾिनो आहे। सेवा में कमु अचण वारे साधन खां वधीक भावना जी महत्ता आहे, पर सेवा तन मन या धन सां करे सघिजे थी। जंहिंखे जहिड़ो साधन हुजे उहो उन्ही साधन सां सेवा करे सघे थो। सेवा अलॻि अलॻि तरीक़नि सां बि करे सघिजे थी। जंहिंखे धन आहे से धन ॾेई सेवा कनि था, पर जंहिं वटि धन जी कमी आहे अहिड़ा माण्हू पंहिंजो टाइम ॾेई सेवा करे सघनि था। ॿिए जो दुख दर्द ॿुधी करे हुन खे तसली ॾियण बि सेवा करण जो हिकु नमूनो थी सघे थो। जिन जो समाज में रुतबो ऐं रसूख आहे से पंहिंजे रुतबे जो इस्तेमालु सेवा लाइ साधन इकट्ठा करण में करे था सघनि। मोटे रूप में सेवाऊं ॿिनि नमूननि जूं थींदियूं आहिनि। पहिरियों, आम इंसान जे जीवन जी मुश्किलुनि खे आसान करण वारी सुविधाऊं ॾियण वारियूं सेवाऊं ऐं ॿियूं पीड़ा जो निवारण करण वारियूं सेवाऊं। पहिरें नमूने जी सेवाउनि में शिक्षा जे प्रसार लाइ स्कूल ठहिराइण, पाणी उपलब्ध कराइण लाइ तलाउ खूह ऐं बावड़ियूं आदि खोटाइण, धर्मशालाऊं ऐं अस्पताल आदि ठहिराइण शामिल आहिनि। ॿिए नमूने जी सेवाउनि में पीड़ा निवारण लाइ कई वञण वारियूं कोशिशूं अचनि थियूं। कई दफ़े हालात अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें फौरी मदद जे रूप में ई सेवा करे सघिजे थी। जीअं कोई दुर्घटना घटी वञे, प्राकृतिक आपदा अची वञे जीअं कि भूकंप, अकाल, महामारी या बोड, त अहिड़ी हालत में हिननि आपदाउनि जे पीड़ितुनि खे फौरी मदद जे रूप में सेवा करे सघिजे थी। तंहिंखां सवाइ बीमारनि जी सेवा पीड़ा निवारण जी सभिनी खां वॾी मिसाल आहे। बीमारनि जी सेवा करण वारनि में सभिनी खां पहिरियों जेको नालो असांजे ख़्याल में ईंदो आहे सो आहे मदर टेरेसा। हुन पंहिंजो समूरो जीवन ही दीन दुखियुनि ऐं कोढ़ियुनि जी सेवा में लॻाए छॾियो। मदर टेरेसा जो चवणो हुयो त हुन खे दीन दुखियुनि जी सेवा में अपार शांती मिलंदी आहे। पीड़ा निवारण जी हूअं त सेवा साधना में अहम भूमिका आहे, पर अगरि हिन पीड़ा खे फौरी रूप सां दूर करण जे अलावा हमेशह लाइ हिन जो को समाधान कयो वञे त हूअ उच्च कोटीअ जी सेवा कोठबी। चवणी आहे त हिकु संत वटि हिकु बुखायल ग़रीब रोटी घुरण वियो। संत हुन खे तंहिं वक़्तु त रोटी खाराई, पर गॾु ई संदसि लोटो विकिणी करे हुन खे हिकु कुहाड़ी वठी ॾिनी, जंहिंसां हू आईंदे लाइ पंहिंजी रोटी रोज़ीअ जो बंदोबस्तु आराम सां करे सघे। समाज सुधार लाइ कई वञण वारियूं कोशिशूं बि सेवा जी नायाब मिसाल आहिनि। असांजे मुल्क में अहिड़ा घणा ई महापुरुष थिया आहिनि जंहिं सेवा जी अहमियत समझी करे समाज सुधार ऐं मानवता जी सेवा में पंहिंजो समूरो जीवन अर्पण करे छॾियो। हिननि में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे ऐं सुंदरलाल बहुगुणा आदि प्रमुख आहिनि। सच्ची सेवा जो मतिलबु आहे त बिना कंहिं मतिलब या स्वार्थ जे ॿियनि जी मदद करणु। जे असां कंहिं मतिलब या फ़ाइदे जी चाहना में ॿियनि जी मदद करियूं था त उहा सचे अर्थ में सेवा न चइबी। अगरि असां पंहिंजे चारों तरफ़ प्रकृति ते नज़र फेरायूं त असांखे हिन जे ज़र्रे ज़र्रे में सेवा ही सेवा नज़र ईंदी। चाहे असांजी धरती माता हुजे, हवा, सिज, चंड हुजनि या नदियूं, समुंड ऐं पेड़ पौधा, सभु बिना कंहिं प्रतिफल जी चाहना या नंढे वॾे अमीर ग़रीब जे भेदभाव जे बिना मानवता जी सेवा में लॻा पिया आहिनि। सूरज पंहिंजी रोशनी बिना कंहिं भेदभाव खे सभिनी खे ॾेई रहियो आहे। अहिड़े मूजिबि ई नदी पंहिंजो मिठो पाणी असांखे ॾेई सभिनी जी प्यास मिटाए थी।

0: समुंड जो खारो पानी बेशक कंहिंजे पीअण जे कम नथो अचे पर हिन पाणीअ जी बाफ़ सां बादल ठहनि था जेके बरसाति था आणनि धरती माता न केवल असांखे रहण लाइ जॻहि ॾिए थी बल्कि अन उगाइण लाइ पंहिंजे सीने ते हल हलाइण ॾेई करे पर सेवा जो सुहिणो नमूनो पेश करे थी पेड़ पौधा बि पंहिंजो सॼो जीवन ई ॿियनि जी सेवा में गुज़ारनि था उहे असांखे प्राणवायु ॾियनि था जंहिंजे बिना असांजो जीअण नामुमकिन आहे तंहिंखां सवाइ उहे असांखे फल जड़ियूं बूटियूं आदि ॾियनि था सेवा जो निस्वार्थ हुअणु तमामु ज़रूरी आहे बदिले जी चाहना सां कयल सेवा सचे अर्थ में सेवा न चइबी छो जो सेवा करे अगरि असां पंहिंजे पाण ते गुमान कयूं ऐं हुन जो गुणगान ॿुधणु चाहियूं त अहिड़ी सेवा व्यर्थ आहे हीअ प्रवृत्ति अॼु जी दुनिया में वधीक ॾिसण में अचे थी माण्हू थोरो कुझु करे ई हुन जो घणो ॾेखावो करे थो ऐं हुन थोरे जे बदिले में तमामु घणे जी आश थो करे हिन मूजिबि हीअ ॻाल्हि त तइ आहे त सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ जीअण वारो इंसानु सही मायने में त इंसानु ई चवाइण लाइक़ु नाहे इंसान त सही मायने में उहो ई आहे जेको पंहिंजे सुख दुख खां वधीक ॿियनि जे सुख दुख जे बारे में सोचे असां इंसाननि खे ईश्वर सही ग़लति सोचण जी समुझ ॾिनी आहे त छो न असां सेवा धर्म जी अहमियत खे समुझे करे हिन जनम खे सफल कयूं
1: साथियो हींअर तव्हां वार्ता ॿुधी रहिया हुआ सेवा जी अहमियत जंहिंखे पेश करे रही हुई सुनीता राजपाल

हाणे कयूं था चर्चाउनि जी शुरूआत। साथियों, चांहि हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिं खां सवाइ असां सभिनी या चयो वञे सभिनीनि जी सुबुह अधूरी आहे ऐं शाम त इन्हीअ जे इंतज़ार में ही थी रहे, है न। असां सभिनीनि जे घरनि में हिकु आदत आहे, ख़ुशी हुजे त चांहि, ग़म हुजे त चांहि, थकिजी पओ त चांहि, ऐं कॾहिं घर में को महिमान अची वञे त बसि चांहि पीअंदा न। इहो ई असांजो पहिरियों सुवालु हूंदो आहे। सचपच असांजे लाइ चांहि सिर्फ़ हिकु ड्रिंक न आहे, बल्कि हिकु भाषा आहे, हिकु जज़्बो आहे ऐं मुहबत जो ॿियो नालो आहे। साथियो, तव्हां सोचींदा हूंदा कि अॼु मां चांहि जे बारे में एतिरी ॻाल्हियूं छो पई कयां, त साथियो अॼु आहे 21 मई ऐं अॼोके ॾींहं खे हर साल आलमी चांहि जे ॾींहं जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। इन्हीअ ॾींहं खे मल्हाइण जे पुठियां मक़सदु आहे चांहि जी ख़ासियत ऐं उन्हीअ जा उत्पादक ऐं चांहि जे कारखाननि में कमु करण वारे माण्हुनि जे योगदान जी सुञाणप ऐं चांहि जी सांस्कृतिक ऐं आर्थिक ज़रूरत में वाधारो करणु आहे। तंहिंखां सवाइ चांहि जी दुनिया भर में खपत वधाइण ऐं इन्हीअ खे पीअण सां जेके स्वास्थ्य लाभ थींदा आहिनि उन्हीअ लाइ माण्हुनि खे जागरूक करणु आहे। ऐं साथियूं, चांहि त अहिड़ी शइ आहे असांजे भारत देश में कि पाणीअ खां पोइ सभिनी खां वधीक पीअण वारी शइ आहे, त उहा आहे चांहि। साथियूं, अॼु जो ॾींहुं सिर्फ़ु चांहि जी चुस्कीअ लाइ ई न आहे, पर अॼु पूरी दुनिया हिकु ॿियो ॾाढो अहम ॾींहुं बि मल्हाए रही आहे। उहो आहे वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, माना ॻाल्हि ॿोल ऐं विकास लाइ सांस्कृतिक विभिन्नता जो आलमी ॾींहुं। जॾहिं असां सांस्कृतिक विभिन्नता या कल्चरल डाइवर्सिटी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, त उहो असां सिंधियुनि खां वधीक केरु सम्झी थो सघे। असांजी सिंधी संस्कृति ख़ुदि में हिकु गुलदस्ते जहिड़ी आहे, जिते सूफ़ियत आहे, रवादारी आहे ऐं सभिनी खे गॾिजी रहण जी सीख ॾींदी आहे। दुनिया में केतिरी ही ॿोलियूं, केतिरा ही पहनावा ऐं केतिरा ही रीति रिवाज आहिनि। हिकु चवणी आहे, अलॻि अलॻि रंगनि जा गुल जॾहिं हिकु बाग में खिलंदा आहिनि त बाग जी ख़ूबसूरती वधी वेंदी आहे। तरक्की या विकास सिर्फ़ पैसो कमाइण न आहे, असल विकास उहो आहे जिते असां पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी कला ऐं पंहिंजनि ॿियनि संस्कृतियुनि जा दर खोलियूं। जॾहिं सची ॻाल्हि ॿोल थींदी, तॾहिं ई दुनिया में अमन ऐं तरक्की थींदी। असांजी सिंधियत जे इतिहास ते अगरि नज़र विझूं त शाह लतीफ़, सामी ऐं सचल, इन्हनि सभिनीनि छा सेखारियो आहे? इन्हनि सेखारियो त इंसान सभु हिकु आहे। असांजे भारत में हर मज़हब, हर वीचार जे माण्हुनि खे हमेशह आदर मिलियो आहे। अॼु असां दुनिया जे कहिड़े बि कोने में हुजूं, पर असांजी पंहिंजी ॿोली ऐं तहज़ीब सां लाॻापो हमेशह क़ाइमु रहंदो। ऐं मां सभिनीनि खे इहो ई चवणु चाहींदसि कि पंहिंजी संस्कृतीअ ते फ़ख्र कयो, पंहिंजी ॿोलीअ खे ज़िंदा रखियो, पर साॻे वक़्तु ॿियनि जी ॿोलीअ ऐं संस्कृतीअ जो बि आदर कयो। छाकाणि त तरक़ी तॾहिं ई मुमकिन आहे जॾहिं सभु गॾिजी कदम वधाईंदा।

साथियों कुछ मानू धरतीय ते राज कंदा आहिन ए कुछ मानू दिलन ते पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक अहड़ी ही शख्सियत हुआ जिन धरतीय ते ही न पर दिलन ते ब हुकूमत कई हो भले ही अज हिन दुनिया में न आहिन पर मानुन जे दिलन में अज ब जिंदा आहिन राजीव गांधी 19वीं सदी में 21वीं सदी जे भारत जो सपनो डेठो हो सुभाव का गंभीर पर आधुनिक नई सोच ए फैसला वठण जी खास कैपेसिटी वारा राजीव गांधी देश के दुनिया जी ऊंची तकनीकुन खा पूरो करण चाहिंदा हुआ हो युवाओं जा एक पॉपुलर नेता हुआ 40 सालन जी उम्र में प्रधानमंत्री ठवण वारा राजीव गांधी देश जा सबनी खा घट उम्र वारा प्रधानमंत्री हुआ पर 21 मई 1991 में तमिलनाडु जे श्री पेरबंदुर में उनन जी एक चुनावी रैली जे दौरान उनन के मारण जी साजिश रची वई एक माई मानव बम ठाई करे राजीव गांधी जी हत्या कई ए साथियों अज आहे 21 मई माना राजीव गांधी जी वर्षीय जो डी असा सभी मिली करे शत शत नमनता कयूं इन्हन जी दुखद मृत्यु खां पोए केंद्र सरकार 21 मई के माना अजो के

खे कौमी आतंकवाद विरोधी ॾींहं जे रूप में बि घोषित कयो ऐं पहिरियों दफ़ो इन्हीअ खे सन 1992 में मनायो वियो। इन्हीअ ॾींहं ते सरकारी दफ़्तरनि, स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में विशेष कार्यक्रम कया वेंदा आहिनि। सभई जॻहियुनि ते शांति ऐं अहिंसा जी शपथ वठी वेंदी आहे ताकि देश जी अखंडता खे सुरक्षित रखियो वञे सघे ऐं आतंकवाद जो डटी करे सामनो ऐं विरोध कयो वञे। साथियों, अॼोके ॾींहं ते ई माना 21 मई ते ई हिकु सिंधी शख़्सियत जी बि वर्सी आहे। उहा आहे सिंधी राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी ऐं समाज सुधारक कुमारी जेठी तुलसीदास सिपही मलानी। 1930 में इन्हनि पंहिंजी नौकरी छॾे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिसो वरितो। नमक सत्याग्रह ऐं भारत छोड़ो जहिड़े आंदोलन दौरान इन्हनि घणेई साल जेल में बिताया। विरांगे खां पोइ ही मुंबई भारत में अची वई ऐं इन्हनि महाराष्ट्र विधान परिषद में उप सभापतिअ जे रूप में कम कयो। इन्हनि मुंबईअ में नवजीवन सहकारी आवास समितियुनि जी शुरुआत करे सिंधी परिवारनि जेके सिंध मां विरांगे खां पोइ लॾे आया हुआ तिन खे वसाइण में ख़ासि भूमिका निभाई। इन्हनि जी अहिड़ी देशभक्ति ऐं माण्हुनि जे लाइ एतिरो भाव ॾिसी असां सभई उन्हनि जी वर्सीअ ते शत शत नमन था कयूं। साथियो, हिकु देशभक्ति गीत ॿुधियो वञे त अचो ॿुधूं ही देशभक्ति गीत, जंहिंखे ॻाए रहिया आहिनि ढोलन राही ऐं कमला केसवाणी।

साथियों, सिंधी जगत ऐं दुनिया भर में रहण वारनि करोड़नि भक्तनि लाइ हिकु वॾी शोक जी ख़बर आई आहे। संत सतराम धाम रहड़की साहिब जा परम पूज्य श्रद्धेय संत शिरोमणी ऐं असंख्य सिंधी भक्तनि जा आध्यात्मिक रहबर हज़ूरी रूप साईं साधराम साहिब जी 19 मई 2026 ते पंहिंजो नश्वर देह जो त्याग करे परमात्मा जे स्वरूप में विलीन थी विया आहिनि। साईं साधराम साहिब जन जो पूरो जीवन आध्यात्म, इंसानियत, सेवा, प्रेम ऐं समाज जे कल्याण लाइ समर्पित हो। जेके बि भक्त रहड़की साहिब या दुनिया जे कंहिं बि कोने में साईं जन वटि आशीर्वाद वठण ईंदा हुआ, उहे साईं जन जी अमृतवाणी ऐं सादगी ॾिसी करे निहाल थी वेंदा हुआ। संदन दिव्य वचन ऐं पावन आशीर्वाद करोड़नि इंसाननि जे जीवन खे आध्यात्मिक रोशनी ॾिनी आहे। सिंधी समाज लाइ हू हिकु युग पुरुष हुआ, जिन जो प्रकाश हमेशा सभिनी जे दिलनि में रहंदो। साथियों, इन्हनि चर्चाउनि सां गॾु ही असांजे अॼोके सिंधी प्रोग्राम जो वक़्तु इते ही पूरो थो थिए। वरी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ आर्तवार ते। तेसीं ताईं दीपिका खे मोकल ॾींदा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:40 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आइए सुनते हैं सईद कादरी के लिखे गीत को। संगीत दिया है मिथुन ने, इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और साथियों ने। फिल्म का नाम है गदर 2।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन का एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

0: गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को M-आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 और ठीक 20 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं श्रीमती खुशबू हर्ष और श्रीमती रामा छंगाणी।

0: घर आंगन सुन नाली मारी प्यारी सी फूट रही सी और सब मुली सखिया ने मां रामा छंगाणी और
1: मैं खुशबू हर्षरा घना न घना राम राम सा।
0: खुशबू अपन राजस्थान रे मायने देखो इया तो घनी चीजा फेमस है प्रसिद्ध है नी।
1: सही बात है।
0: पर अठेरी कोई कोई जी की चीजें में बहुत ही ज्यादा रोज री रोज याद भी आवे सबने। अब बताओ काई
1: गर्मी।
0: देखो गर्मी तो है ही है खुशबू, पर इनके अलावा और भी कई मोटी मोटी सारी चीजें हैं जी की अगर अपन बाहर देशा रामायण में बात करानी बिन विषय रामायण तो लोग अचुंबो करे। और ये अचुंबे री बात रामायण सबसे मोटी बात आई है कि चाय।
1: चाय
0: की देखो जठे लोग गर्मी रामायण दूजे देशा रामायण चाय सु परहेज करे बठे अपने राजस्थान रामायण चाय पीणो तो एक शौक जिसो है और एक औषधि के रूप में भी काम करे है नी बता।
1: सही बात है। रमा बहन की चाय रो नाम सुनते तो हर एक रे मुंड माथे खुशी आ जाए कि पत्तों को ने काई मिल गयो है। और आपरे जीवन रे मायने सबु ज्यादा महत्व राखन आली भी है
0: चाय।
1: चाय सुबह उठा तो चाय, थकोड़ा हुआ तो अपने चाहिए चाय, तनाव में हुआ तो चाय, और चार भाईलियां भेली हुआ तो भी अपन चाय। मैतब की चाय नी होर प्री अपारे सबरे जीवन रो आधार होगी है।
0: और थाने ठाए खुशबू आज रे 21 मई रही सबसे मोटी बात आई है कि आज है अपनो चाय दिवस। और खुशबू बहन ई दिवस ने मनाने रो उद्देश्य भी वही है कि चाय उत्पादक किसानारी मेहनत और चाय उद्योगारी मेहता ने समझावणो।
1: सही बात है रमा बहन की चाय रे मायने ऐसा कई रोग प्रतिरोधक तत्व भी हुआ करे और पोषक तत्व भी हुआ करे है। हरी चाय हुए जिकी वजन घटावे में मदद करे
0: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: अदरक खाली चाय है जी की पेट ठीक रखे और सर्दी रे मायने सर्दी जुखाम है जी का ठीक रखे।
1: सही बात है।
0: पर रमा बहन ध्यान देने री बात आ है कि ज्यादा चाय है नी बापारे शरीर ने नुकसान भी कर सके है।
1: सही है। देखो खुशबू बहन, चाय नहीं तो
0: दिन नहीं। सही बात।
1: जो काल री बात बताऊं कि अबे होगी छुट्टियां तो काल मारीज की भाईलिया है बे मारे घरे आई और बे भाईलिया भाई कई घंटा तक हथाया मासू कर रही थी और आप रे सुख और दुख री बातें भी मैं सब कर ही रहा था।
0: तो देखो रमा बहन भाईले बैठा जाने तो वही है
1: तो
0: वही और ई बखत रो ठा भी अपन होनी चाहिए लेकिन बखत कणे निकल गयो है।
1: बिल्कुल। और बीड़ बखत रे मायने वो सुफ मोटो जी को आधार हुए या इया कहवा की बातिया रे जो मजो आया करे कद आवे जब बीच रे मायने मिल जावे
0: चाय
1: और चाय जी की होया करे भी बातिया रे मायने रस घोल दिया करे।
0: सही बात है। और देखो रमा बहन की मैं भी जब मारी भाईलिया बैठा नी तो मैं तो मारे भाईले बैठी बैठी बातें करा और इनरे बीच में कही हुए कि मारी जी की बेटी है नी बा मने ये आधी आधी घंटा सु चाय है जी की नोरो काटती रहे और मैं मारे चाय पीता रहे वहां तो मारी भाईले नी वे भी घनी राजी हो जाए कि वाह खुशू बहन आज तो चाय रो है जी को बातें रो भी आनंद आ गयो और चाय रो भी आनंद आ गयो।
1: सही बात कह रही हो खुशबू। और देखो जठे चाय की बात करानी तो कई लोग क्या करे है कि चाय जिया की नुकसान करे हाँ। बारे बात करी पर मुख्य रूप से मैं थाने बता दूं कि चाय रिजी की तासीर होया करे बात ठंडी होया करे है। हाँ। और आपा कई बार देखा भी हाँ कि पढ़ने वाला जिका टाबर टिंगर होया करे जिका लोग पढ़ाई करिया करे रात रात भर ने बिया ने भी चाय रो ही बताया करे कि भई रात ने चाय पीने से क्या है कि नींद कोनी आवे आंखें रमाए ने झाल कोनी बंधिया करे
0: थकान
1: भी कोनी होया करे और कई बार दिन भर रमाए ने आपा एक टक कोई काम में रमाए ने जी लगा रिया हाँ जठे अपनी आंखें हिल नहीं रही है आपा एक टक बैठा तो बिड़ सारू भी चाय है अपने शरीर मायने ऊर्जा दिया करे है।
0: सही बात है। और देखो अपारे घर में नानी दादी हुए तो जब अपारो गर्मी सु पेट खराब हो जावे या कहीं भी हो जावे पेट गर्म हो जाए तो बे झट कह देवे कि भाई चाय बना और बीर माने थोड़ो आधो पानी मिला पीवा तो पेट है जिको सही हुए है। और ई दिवस ने मई में मनाने रो कारण भी है कि ज्यादातर देशों रे मायने ई महीने में ही चाय रो जिको उत्पादन है नी वो शुरू हुयो
1: अच्छा।
0: थो और असम है जिको भारत रो पहलो ऐसो राज्य हो जठे चाय रा बागान भी शुरू करिया गया है। तो आ तो हुई देखो रमा बहन अपारे कि भाई चाय अपारे जीवन में क्या महत्व रखे
1: और कोई काम री शुरुआत भी करानी तो भी चाय क्या है भी काम रमा ने चार चांद लगा हाँ, दिया करे जिया की अपनो कार्यक्रम
0: तो इनरे साथे ही बहना ने सुनावा एक मनोरंजन खातर चोखो सो गीतड़लो
1: जरूर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: रमाबेन बेटियां भार को नहीं हुए है बल्कि माँ बाप रो मान होया करे है।
1: बिल्कुल खुशबू, और देखो बेना ई बात ने आपा और चोखी तरीके सु जान सा ई कहानी रे माध्यम सु।
0: कहानीकार है श्रीमती अनुपम पांडे, तो आपा सुना एक चोखी सी कहानी।
2: 20 वर्षा पछे आज लता आपरे गांव री मेड में पग धरियो हो। आपरे गांव में ही लता अनजान सी खड़ी ही, सोचे ही घरे जाऊं के नहीं जाऊं, मने कोई पिछाण सी के नहीं। आपरे मन ने समझावन खातिर बरसा पुरानो पीपल जो इन गांव रे पुरखा री याद दिराऊं तो हो री ठंडी छिया बैठर सोचन लागी। ओ मारो ही गांव है, इन गांव में मारो जलम हुयो, गांव में मारो मानीस तो घर, बाबूजी गांव रा सरपंच, जिना रे हुकम सुसो गांव चालतो, मारे सु बड़ा दो भाई श्याम और मुरारी। भाइया ने देख देख बाबूजी री छाती फूली नहीं समाती, पर मैं बाबूजी ने फूटी आंख नहीं सुहाती। बाबूजी री सोच ही के बेटियां धरती पर भार हुए। वे दिन मुरारी रो जन्मदिन हो, घर में रंग चाव हो रिया हा, रसोई में पकावान बनता हा, भाई नुआ कपड़ा पैर राजकुमार दाई फिरे हो। मैं माँ ने पूछ लियो, माँ मारो जन्मदिन कद आवे लो, मैं भी वैदी नुआ कपड़ा पैर राजकुमारी बनसू। माँ धीरे से बोली, बावली छोरिया रा जन्मदिन नहीं हुआ करे, वह तो धरती माथे भार हुए। एक लंबी सांस छोड़ता माँ बोली, जिन दिन थारो जन्म हुयो थारा बाबूजी मायली साल में जाए सू गया और रोटी तक नहीं जीम्या, पण क्यों माँ थारा बाबूजी रो कहनो हो, आज मारी पागड़ी री आन नीची करन ताई आ छोरी कठे सु आई है। आ बात सुन बे दिन मारा आंख्या सु आंसू ढुल पड़या, मैं ना समझ टाबर भी जान गई कि मारा बाबूजी मने नहीं चावे है। घर में कोई चीज री कमी नहीं ही, खेती बाड़ी धीनो धापो मोकलो हो, दोनों भाई स्कूल जावने ने तैयार होता और माँ दूध री गिलासा दोनों भैया रे हाथा में दे, चूरमे रा पिंडिया टिपन में घाल दोनों भाइया ने भीड़ करती। भाइया ने देख मारो भी मन मोकलो पढ़न ने करतो। एक दिन मैं माँ ने कहो, माँ मने भी स्कूल में घाल दो, मैं भी पढ़न ने जासू। सुनता ही माँ बोल पड़ी, आ पढ़ाई लिखाई छोरियां खातर नहीं बनी है, आ बात फिर कदे ही मत करिए, थारे बाबूजी सुन ली तो थारी खैर नहीं है, पर मारो बाल मन फेरू जिद करियो। माँ सामली रूपा और कमला भी तो स्कूल जावे है, माँ मैं भी स्कूल में पढ़ एक बड़ी डॉक्टर बननी चाहूँ, आप एकर बाबूजी ने कह तो देखो। माँ कोई कैमती बैसू पहली बाबूजी री आवाज सुनीजगी, काई कहो पढ़न ने जासी डॉक्टर बनसी, काई चीज री कमी है हमारे घर में,

घर सू बारे जाए मारी नाक कटावेला, चुपचाप मारे साथे घर रे काम में हाथ बटाया कर। थोड़े दिना में आगले घर जानू है। मैं मुंडो नीचो करियोड़ी आंख्या सु आंसू टपकावती रही। मने मारू पढ़ाई रो सुपनो सदा सुपनो ही रहतो लाग्यो। सावन रे महीने में तीज रो मेलो भरीस्तो हो। गांव रा सगला लोग मेले में रचल पचल रहमता हा। एक दिन माँ माने भी मेले में लेगी। मेले में सू दोनों भाइयां पैन और कापियां लीनी तो मैं भी माँ सामी रंगारी डब्बीर कापी लेवन ताई जिद करी। तो माँ मने रंगीला डोरा सुई धरवार कयो, कापी रो काई करसी। रंगीला डोरा सु कसीदा करया कर, आई थारे काम आसी। सुनता ही मेला रो सगलो हरख, आंख्या में आंसू बन ढुल पड़ो। पढ़ाई री आस हिवड़े में लियोड़ी, मैं कद स्यानी हुईगी पतो ही नहीं चालो। 14 बरसा री उम्र, ऊंची कद काठी, केसर जू रंग, काली बादली जू घना काला केस, मुंडे पर बिजली सी आभा लियोड़ी मैं घनी मोटियार होएगी ही। अबे बाबूजी जल्दी सू जल्दी मारो ब्याम कर, मने अगले घर भीर करनी चाहता हा। सियाले रा दिन हा, सिंजा रो टैम हो, बनवारी काका गांव सू आया हा। बाबूजी ने कहता सुनियो, कोई चोखो छोरो हुए तो बताया, लता रा हाथ पीला कर बेगी ही भीर करनी चाहूं हूं। अगले ही दिन उगती भोर में बाबूजी चूंदड़ी रो साफो बांध, कढ़ाई री जूतियां पगलियां में घाल, बनवारी काका रे साथे भीर हुई गया। सिंझा ने बाबूजी मुछा रे ताव देवता घर में पधारिया। लतारी माँ सुनो हो, आज तो मुंडो मीठो करवाए दो, छोरी रो साख पक्को कर आयो हूँ। आ बात सुन माँ घनी राजी हुई और रसोई में जा सीरो बनावन लाग गई। तकदीरा रा खेल तो देखो, बाली उम्र में मारो तो ब्याम और दोनों भाइयां रे पढ़न खातिर शहर में जावने री जुगत होवन लाग गई। मैं समझ गई ही कि मने मारा सपना ने मार पराए घर री चार दीवारी में कैद हुवनो है। देखता ही देखता वो दिन आ गयो जद मैं बीनणी बन मारे सासरे चली गई। सासरे में सासू सुसरो छोटी ननंद और देवर भर्यो पूरो कुणबो हो। मारा साहब विनोद स्कूल में मास्टर हा। मारे जेड़ी फूटरी रका मेरी बीनणी ने देख सासू ससुरा से घना ही राजी हा। मैं मारे काम सु सगले घर रो मन जीत लियो हो, पर मैं धीरे धीरे जान गई ही कि विनोद मारे सु राजी नहीं है, क्योंकि विनोद अनपढ़ गंवार नहीं एक पढ़ी लिखी बीननी लावनी चाहता हा। आ गलती भी मारी ही कि मैं अनपढ़ ही, ओ दोष ही मने हो कि मैं पढ़ी क्यों नहीं। बाबूजी ने जाए कोई नहीं कहो कि मने क्यों नहीं पढ़ाई। मैं मारो दुखड़ो मन में लियोड़ी मारी गृहस्थी में रमन लाग गी। ब्याम रा 12 महीना हुआ कोनी कि मैं एक बेटी री माँ बन गई। माँ बाबूजी कने संदेशो गयो के थे नाना नानी बन गया, मारे बेटी हुई है। ओ सुन बाबूजी पर उत्तर दियो, बेटी हुई है तो काई खुशी री बात है, धरती पर एक छोरी रो भारी बढ़ायो है। ओ सुन मारी आंख्या सु गंगा जमुना बेवन लाग गी। मैं मारी छाती करड़ी कर मार बाबूजी रे घरे कदे नहीं जावने री सोगन खाई। मैं मारी फूल सी बेटी में मारी छब देख रही ही। बे दिन ही मैं सोच लियो हो कि मारो अधूरो सुपनो मैं मारी बेटी सु पूरो करवासूं। मैं मारी बेटी ने एक डॉक्टर बना मारो सुपनो साँचो करसूं। दिन जामता देर नहीं लागी, सुइया स्कूल जावन लागी। ननंद और देवर दोनों आप आप रे घर रा हो गया। लंबी बीमारी रह चालता सुसरो जी परलोक सिधार गया। सासू जी भी बीमार रहवन लाग गया। सगला री जिम्मेदारी पूरी करता मारो माथो धोलो हो गयो। इतने बरसा में मारे पीवर सु ना तो कोई आयो और ना मैं गई। हाँ बनवारी काका जरूर एक दो बार आया हा, वे आपे ही राजी खुशी रा समाचार दिया हा। बेटियां रो धन हल्को हुए है, टाबर थका ही वो सुनती आई ही, पर फिर ही मायता खातर बेटियां रो पेट बलिया करे है। कदे कदे मन में हुक सी उठती ही माँ सु मिलन री, पर फिर मन मार रह जाऊती, बिना बुलाया अब नहीं जाऊंगी। जेठ रो महीनो हो, मेरी सुइया रात नहीं जयपुर सु आप रे हॉस्टल सु आई ही। आप रे पापा ने पढ़ाई री बातें बताई रही ही। इती ताल में ही बनवारी काका आए गया। पहली सु घना कमजोर लागता हा, हाथ में गेडियो भी दिख रियो हो। मैं काको सा ने पानी झलायो और हालचाल पूछन लाग गी। जद बे बोलिया, बेटी मारा हालचाल तो ठीक है, पर थारे बाबूजी री हालत घनी खराब है, क्यों काई हुयो। बेटी गांव में बाबूजी ने संभाल वालो कोई नहीं है, आधे शरीर में लकवो मार गयो, अपने आप चाल फिर भी नहीं सके है। थारी माँ भी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, दिखन भी कम लाग गयो। पण काकोसा माँ बाबूजी एकला क्यों है, श्याम और मुरारी भाई की न है, वे दोनों ब्याह कने कोनी। नहीं बेटी, तू तो जाने है तारे बाबूजी ने आप रे बेटा पर कितनो गुमान हो।

0: वह आपरे आगे कोई ने कोई नहीं समझता हा। शाम पढ़ाई पूरी कर गांव आयो और सरपंचाई करनी शुरू कर दी। जदे तो बाबूजी घना राजी हो, बेटे रो ब्याह बड़े घर में धूमधाम सू करो। पण बीननी इसी आई के आमता ही न्यारा चूल्हा और न्यारा घर कर लिया। माए री माए बाबूजी घना ही कुल बुलाया पण कोई जोर नहीं चालो। छोटोड़ो मुरारी तो शाम सु ही ऊपर कर निकलियो। शहर में आपरी पढ़ाई पूरी कर बड़ो अफसर बन गयो। शहर में ही आपरी पसंद री छोरी सु ब्याह कर माँ बाबूजी कने बीननी रो मुंडो दिखावन ने लायो हो। मुड़र कदे झांक्यो ही नहीं के माँ बाबूजी जीवे है के मर गया। बाबूजी ने ओ सदमो ले बैठो, वह तो इसी खाट झाली के मुड़र उठ्या ही नहीं। पीवर री आ कहानी सुन लता री आंखिया सु आंसू झरन लाग गया। पण लता लाण बेटी ही रोने सिवा और काई कर सकती ही। मन में सोचे ही जब तक बाबूजी रे मन सु बेटा बेटी रो भेदभाव नहीं मिट जासी, वह मने संदेशो भेज नहीं बुलासी, मैं ब्यासू मिलन नहीं जासू। सुइया खड़ी हो आपरी मारा आंसू पूछन लागी। माँ थे बचपन सु ले आज तक घना ही आंसू बाया है। मैं सगले आंसुआ रो हिसाब पूरो कर थारो सुपनो साँचो करसू। इतो कह सुइया पाछी कोले जाने री तैयारी करन लागी। लता बेटी ने भीर करता थका बोली, बेटी अब के डॉक्टर री डिग्री ले री आए, ओ ही मारो आशीष है। पोरी ठंडी रात आंख्या में नींद रो नाम ही नहीं हो। काल तो म्हारी सुइया डॉक्टर बन आए ली, मारो सुपनो साचो हो सी। सोचता सोचता दिन पूरो उग्यो ही नहीं हो कि फोन री घंटी टनटना उठी। विनोद फोन हाथ में लियो, बनवारी काका बोल रिया हा, विनोद एकर लता ने बाबूजी सु मिलाए दो, बे आप रे टाबरा खातिर तरस रिया है। इतो सुनता ही लता रो काल जो फाटन लाग गयो। लता बेगी बेगी माए गई और हाथ में टेची लेन बारे आएगी। साहब मने अबरी अब गांव जानू है, मारा बाबूजी मन याद करे है। आंख्या में आंसू लियोड़ी लता भीर हुईगी। माँ चाणचक सुयारी बोली सुन पीपल हेठी बैठी लता चौंक गई, अरे तू आएगी? हाँ माँ, मैं मारी डिग्री साथे लेन आई हूँ। अब बेगी सी नानो सासु मिलन चालो। अबे लता आप रे साहब और सुइया साथे आप रे घर रे सामे उबी ही। बारनो खुलता ही लता सामे खड़ी माँ रे गले लाग गी। माँ मैं थारी लता, मारा धूजता होठ और आंख्या सु ढुलता आंसू, कोई नहीं बोल और भी सगली कहानी कह दी। अबे लता दौड़ और बाबूजी रे खन्ने जा पहुंची। बाबूजी, लता री बोली सुनता ही बाबूजी एक टक बेटी सामी झांकन लाग गया। आंख्या सु नीर बह तो जा रियो हो। बेटी मने माफ कर दे, स्यात मने मारे कर्मा री सजा मिल रही है। इन खातिर ही इत्ता बेटा पोता होता थका, मैं एकलो पड़ियो हूँ। मारी सेवा और इलाज खातिर कोई मारे कने नहीं है। आप आ बात मत बोलो नानो सा, मैं करसूँ आपरो इलाज। सुयारी आवाज सुन नाना नानी दोनों हाथ जोड़िया माफी मांग रिया हा। माने माफ कर दे बेटी, अबे हमारी आँखियाँ खुल गई है। अबे मैं जान गयो बेटियाँ धरती पर भार नहीं, माँ बाप रोमान हुए। मैं भगवान सु विनती करूँ हूँ कि हर घर में सुइया जेड़ी बेटी पैदा हुए और आप रे माँ बाप रोमान भड़ा नाम रोशन करे। इतो कह बाबू जी आँख्या मीच ली, स्यात बाबूजी लंबी नींद सो गया। और लता आपरे बाबूजी रे दुख और आपरे सांचे हुए सुपने ने देख सुनी सी खड़ी ही।
1: बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उनरो अधिकार, शिक्षा है उनरो हथियार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। बेटिया रे मेहताओं ने मेहता ने बतावन वाली इन प्यारी सी फूटरी सी कहानी रे सागे चालो बहन खुशबू बहन आपा आगे सुनाओ फूटरो सो गीतड़ लो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: બેન એક વાત કરા આપણે ગ્રામીણ ક્ષેત્ર રહી મહેતવ મુદ્દે રી જી કે ખુશ્બુ જુડેડી હૈ આપણે કુટીર ઉદ્યોગ હસું યાની એક ગ્રામીણ ક્ષેત્ર રે વિકાસ રે બારે માયને બીડે આધાર રે બારે માયને બીડે મૂળ ઢાંચે રે બારે મેં
2: બિલકુલ રમાબેન કુટીર ઉદ્યોગ ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા और महिला सशक्तिकरण रे रीढ़ री हड्डी हुई करे है और छोटे स्तर सु शुरू हो प्रा कम पूंजी में कम साधन रे द्वारा और पारंपरिक कौशल और घर बैठा बैठा ही आर्थिक स्तर ने आपा बढ़ा सका हाँ
1: बिल्कुल यानी कि आर्थिक स्तर रो आपा नो बहुत ही चोखो साधन है और बेना इनरे अलावा कुटीर उद्योग रे मायने आपा सबसे मोटी और महत्व बात आपने आ है कि आज देश री सबसे गंभीर समस्या यानी कि बेरोजगारी ने दूर करने रे सारो भी और बहुत चोखो विकल्प है
2: और 18वीं और 19वीं शताब्दी रे माय कुटीर उद्योगों सु आपा देखो घर आधारित जिका विनिर्माण हानि वी प्रणाली ने उपयोग कर और शुरू करियो गयो हो
1: बिल्कुल बिल्कुल खुशबू और देखो आज जिको 18वीं और 19वीं शताब्दी रे मायने विनिर्माण जड़ो जिको शब्द लियो जातो हो बी शब्द रो अर्थ हो कि घर पर बैठे ही

0: वस्तुआ या सेवा मा सु बड़ी बड़ा सामान। और देखो बहना थाने आ बात तो पतो चाल गई है कि कुटीर उद्योग और इतिहास कितो तो पुराण है और इंद्र मायने ही आपा जिया की बात करो अचार है, पापड़ है, मसाला, डेरी, पशुपालन, दूध, दही, पनीर, इन सब रा घेरा है जिका उत्पाद वगैरह है। इन सु गुड़ बनाना है, शहद रा उत्पादन है, मिट्टी रा बर्तन बनाना है, मिट्टी रा खिलौना बनाना, शहद रा उत्पादन है, मिट्टी रा बर्तन जिया की आप पहला बात ही करी, और बांस रा उत्पाद है, ये सब यार मायने आया करे।
1: इनके साथ साथ आप कपड़ा पर कढ़ाई कर

0: the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री

0: पर राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time.
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched.
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों

0: पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा कर

देखते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं।
2: बिल्कुल, मैं हूं गौतम और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये है फोन इन कार्यक्रम, यानी कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कोई भी प्रश्न आज के विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें डायल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, आज का विषय भी बता दूं मैं आपको। आज का जो विषय है वो भाइयों बहनों किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाओं को लेकर है, और अगर आपके जहन में इस विषय से कोई संबंधित सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से अगर आप बाहर हैं तो 011 लगाना ना भूलें, उसके बाद 2342-1081, और दूसरा जो लाइन है हमारा वो है 2342-1081 करें और सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और आज बात करेंगे किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाएं क्या हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है और इसी का जवाब जो है एक्सपर्ट हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में कौन है हमारे साथ।
2: बिल्कुल, आज जो हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में वो है डॉक्टर प्रशांत, जो कि अपर आयुक्त हैं प्रसार कृषि एवं किसान मंत्रालय में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: मैं भी सभी किसान भाइयों और बहनों का यहाँ पे आज धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ।
2: जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि ये जो किसान जो है किसान उन्मुक्त सेवाएं,
1: विस्तार सेवाएं
2: है क्या ये?
3: देखिए, भारत सरकार कई योजनाएं किसानों के लिए संचालित कर रही है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि किसानों को का सशक्तिकरण हो, उन्हें प्रशिक्षण मिले
2: जी,
3: उन्हें मतलब एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मौका मिले
2: जी।
3: तो एक हमारी ऐसी योजना है आत्मा योजना, जिसके अंतर्गत हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, और किसान ये कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा ये मिलकर जिला स्तर पे काम करते हैं। आत्मा केवल जिला स्तर पर नहीं, लेकिन उनके ब्लॉक स्तर पर भी जो उनके विस्तार कर्मी है वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों को मिलते हैं और उनको बताते हैं कि उनको किस तरीके से प्रशिक्षण का लाभ लेना है। अब इस आत्मा योजना में किसानों को विविध विषयों पर, जैसे हम जानते हैं कि कृषि में जैसे अभी खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है, मौसम रबी का मौसम जब शुरू होता है, तो उससे जो संबंधित प्रशिक्षण है वही किसानों

0: को उस वक्त उस प्रशिक्षण का लाभ कैसे लिया जाएगा, उस प्रशिक्षण में कैसे उनको सम्मिलित किया जाएगा, इस पर मार्गदर्शन करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो एक्सपोजर विजिट है जिसकी मैंने बात करी, तो इसमें भी वो जो अनुसंधान होते हैं कृषि क्षेत्र में
1: जी,
0: तो जो रिसर्च क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसको किसानों तक पहुंचाना, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी किसानों को अवगत कराया जाता है। और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं, प्रदर्शनी हम जिसको कहते हैं खेत स्तर पर, उन डेमोन्स्ट्रेशंस को भी लगाया जाता है खेतों पर, कृषि विज्ञान केंद्र के खेतों में या प्रोग्रेसिव फार्मर्स के खेतों में। और उन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को ये बताया जाता है कि आप इस वैरायटी का चयन कीजिए, आप ये बीज कहाँ से आपको अच्छे उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ से आप खाद खरीद सकते हैं, कितना संतुलित मात्रा में आपको खाद को मतलब यूटिलाइज करना है फील्ड में। और अपने सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपका सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको हम ये बोलते हैं कि खेत में जो हमारा मिट्टी की उर्वरकता है वो हमेशा ही बढ़नी चाहिए, उसकी मिट्टी की उत्पादकता बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। और जब ये अपने खेत से मृदा की जब जांच कराते हैं तो उससे ये पता चलता है कि उसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, फॉस्फरस उपलब्ध है, पोटैश उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉन्ग इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

आइए सुनते हैं शाबिर अहमद के लिखे गीत को। संगीत से सवारा है हिमेश्री शमिया ने, इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने। फिल्म का नाम है शॉर्टकट रोमियो।

इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की। फिल्म का नाम था हम आपके दिल में रहते हैं।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म शहजादा का ये गीत। इस गीत को गाया है शाश्वत सिंह और शिमाली ने। गीत को लिखा है श्लोक लाल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा यहीं पर संपन्न होती है। दिन में 4 बजे अपने विशेष सभा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

दारू चैनल है। दिन के 4 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है, दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है, फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की, ये वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो, तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है

0: जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है और आज भी
1: जी
0: वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा
1: जी
0: ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस एफआईआर के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब
0: तो वो
1: इतना
0: मौका,
1: बड़ा आतंकवादी और
0: इतना
1: इतना
0: बड़ा
1: जी
0: आतंकवादी
1: के सब
0: कि
1: जान
0: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है,
1: जी
0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। बीएसएफ की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे।
1: जी
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जे एन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो
1: जी
0: जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लाडेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को, हॉट शॉट मास्टर को, सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही। और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात है
1: बिल्कुल
0: बड़े
1: बहुत सम्मान की
0: ऑर्गेनाइजेशन
1: बात है और ये
0: के।
1: देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा
0: खुदकश
1: करना
0: अटैक
1: है।
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए। और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी, इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया, अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था,

0: और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
1: जी
0: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन किया।
0: बनाया था, डिजाइन किया
1: अच्छा
0: था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
1: जी
0: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था। और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल किए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली
1: ओके
0: सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
1: जी
0: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की
0: हम
1: कोशिश करे।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इंकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इंकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद हम सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं।
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख
0: गाजी
1: रहा
0: बाबा
1: है
0: देख रहा था जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था, पाकिस्तानी
1: अच्छा
0: टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता,
1: ओके
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती थी।
1: ज्यादा होती
0: मार तो
1: बिल्कुल
0: हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक,
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ
1: ओके
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई।
1: को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है,
1: यानी
0: आंख
1: कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया।
0: हाथ
1: आप उस
0: का,
1: वक्त
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा।

0: स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा,
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल
1: पता लगा
0: टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर, हम
0: हमने
1: इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पर कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट के तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे हो।

0: मतलब इस उसको कहते हैं ना कि
1: जी
0: मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
1: आने,
0: लगते हैं।
1: जी जी
0: बट
1: जी
0: मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
1: जी
0: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं हो पाई
0: एस्टेब्लिश नहीं
1: होगी
0: हो पाया, शिनाख्त
1: जाहिर है।
0: बाद में हुई,
1: जी
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। तो हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे,
1: जी
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट देवर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
1: जी
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू
1: क्या
0: एंड
1: बात है
0: बीएसएफ
1: भाई।
0: टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफूर हो गया,
1: हाँ खत्म हो गया,
0: ये
1: सही कहा
0: नहीं
1: आपने।
0: लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
1: बिल्कुल
0: पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
1: सक्सेसफुल,
0: होता है, अगर
1: बिल्कुल
0: आप फाइनल फतह कर लेते हैं,
1: जी।
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना
1: हाँ
0: वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो
1: कम
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है,
0: हाँ
1: यस,
0: ये
1: उसका
0: है
1: एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी
0: इतनी
1: थी
0: बड़ी
1: कि
0: थी।
1: उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल
0: हाँ
1: होगा।
0: बिल्कुल, ही वाज अ ड्रीम चेज फॉर एवरी
1: एग्जैक्टली
0: फोर्सेज, ही
1: बिल्कुल
0: वाज अ हॉट
1: बिल्कुल।
0: केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: कर ही रहा
1: अपने
0: था
1: नमूने
0: फॉर
1: पेश
0: मोर देन
1: करता।
0: 9 ईयर्स वैली में, 1994 से 2001 तक ही वाज ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाइजैकिंग,
1: और फिर
0: एंड दिस शालीमार किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001,
1: बिल्कुल, मैं
0: पार्लियामेंट
1: अनगिनत
0: पार्लियामेंट
1: पार्लियामेंट
0: अटैक
1: अटैक
0: 13 दिसंबर 2001
1: कितना
0: हजार एक
1: बड़ा।
0: तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा
1: बहुत
0: अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: भी
1: बहुत
0: दिन
1: बड़ी
0: में
1: बात।
0: 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है,
1: जी
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लानर
1: इतना
0: था,
1: बड़ा प्लान है, इतना बड़ा
0: पाकिस्तान से
1: आतंकवादी।
0: लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के,
1: जी
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज
1: बिल्कुल
0: और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी
1: बहुत
0: थी
1: बड़ी, बहुत
0: और
1: बड़ी सर। यहां
0: बहुत
1: पर
0: बीएसएफ का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ।
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि
0: इसको
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी
1: डेयर
0: मानता
1: डेविल।
0: हूं क्योंकि
1: जी
0: बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर इसको, टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के उस
1: बिल्कुल
0: फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम
1: सर।
0: जाना
1: वो जो एक
0: चाहिए।
1: फौजी का जो एक जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर
0: क्या है कि
1: जिस।
0: जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं।
1: जी
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए।
0: थड़थड़ाए,
1: जी
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है।
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से
0: एग्जैक्टली, नहीं तो
1: जिम्मेदारी
0: मैं
1: और
0: उस दिन
1: भार।
0: बटालियन का हेड था,
1: जी
0: मेरे
1: आप लीड
0: पास
1: कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: आप फ्रंट पर
0: खुद
1: रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: मौत
0: जाता
1: के मुंह
0: है,
1: में घुस गया।
0: और घुसे वो
1: बिल्कुल।
0: गाजी बाबू के माथे में घुसना कोई सिंपल
1: और
0: चीज
1: जैसा
0: नहीं
1: आपने
0: थी,
1: बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं हमको,
1: मिलता नहीं
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
1: जाने।
0: जिंदगी खुद को कोसते
1: बिल्कुल
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: दुबे सर, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ। योर स्टोरी गिव्स मी गूज़बम्प्स.

0: So great words, because we still remember the bloodshed in Australia, the Bondi Beach, very recently by the IC,
1: जी
0: by the ICC cadres. हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है.
1: जी और एक और है सर, ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर्कल, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू. मीरा सिंह है ये सिलचर असम से.
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी,
1: जी
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे, तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल
1: जी
0: एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है. ये
1: बिल्कुल.
0: वर्ड उनके थे, क्योंकि
1: अच्छा
0: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता है ना, कि
1: जी
0: जो
1: जी
0: अमिताभ
1: बैजो.
0: बच्चन, हाँ,
1: अच्छा जी
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी,
1: जी
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो
1: बिल्कुल
0: रेप्लिका भी मेरे पास रखी है.
1: रखी है वो आपकी
0: आप
1: यादगार.
0: यूनिफॉर्म में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी. मैंने
1: बिल्कुल
0: उसको धो के एक एक होल मार करके
1: जी
0: लगाया
1: जी
0: हुआ है.
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी
0: ओ
1: ग्राउंड
0: वाह,
1: जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी. हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको
0: एग्जैक्टली
1: बनाने
0: होती
1: के
0: है.
1: लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: एक्चुअली फिल्म
1: अनबिलीवेबल.
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की. फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है,
1: जी
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है, और एक
1: बिल्कुल
0: कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: बिल्कुल
0: है.
1: सर. एक चीज लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा,
0: जी
1: अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते हैं, होते हैं.
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता.
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान
0: जो
1: जाएगी या जान ली जाएगी
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है, या मरने का
1: या
0: खतरा
1: मरने का,
0: होता है, तीसरा कुछ नहीं होता.
1: तीसरा कुछ नहीं, या
0: मतलब
1: तो
0: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, या आप शहीद हो
1: जान से
0: जाते
1: जाते हैं,
0: हैं.
1: शहीद
0: बस
1: होते
0: दो ही
1: हैं
0: कैटेगरी
1: बिल्कुल
0: होती है. मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने
1: जी
0: शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं
1: बिल्कुल.
0: एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट
1: और
0: हूं.
1: बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ
0: अरे
1: सर.
0: सर, सो
1: जी
0: नाइस, सो
1: सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से.
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है,
1: जी
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं,
1: जी
0: 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम. आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है. अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं. यू
1: बिल्कुल.
0: प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट.
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं. जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं.
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बीके दत्त है,
1: जी
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स इट्स इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस. थैंक यू सो मच.
1: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है. और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे.
2: डरा

तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे

0: थे IBSF में, वो सब जानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए. सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं.
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा.
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं. इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: चिट्ठी के जरिए आया था.
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी.
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद.
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर. तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है.
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो.
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार. आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे.

संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची

0: रखना है, जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है, उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं। और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह के?
1: देखिए मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था।
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो चारपाई पर बैठ के सुनाते
0: अच्छा।
1: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाई हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाई हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: बीएसएफ में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
0: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने

0: इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई
1: जी
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: जी
0: सरकारी
1: तो 25
0: काम
1: साल जो
0: करी।
1: सर आपने बीएसएफ में दिए, उसके अलावा,
0: ये 9 वर्ष एनआईए में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी जी जी
0: और कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा
0: मेरे दिल से लगा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया और
1: अच्छा
0: काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया
1: कोर
0: है
1: एरिया है
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता
1: जी।
0: हूं।
1: सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर एफएम रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक
1: ये
0: यू सो मच
1: गिरीश हैं।
0: गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं, तो
1: अच्छा
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी
0: ये
1: है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर
1: जी
0: से बनी है
1: जी
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी
0: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी,
1: ओके
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
1: जी
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी
0: स्ट्रीम
1: सर
0: कर
1: एक
0: रहा है।
1: मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: लिखना
0: लिखना
1: चाहते हैं। यश
0: चाहेंगे
1: शिंदे
0: आप।
1: हैं ये। डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्र नाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नरेंद्र
0: है,
1: नाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी। आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती
1: बिल्कुल।
0: हैं, देश प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड
1: और सर
0: फॉर मी।
1: यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहां पे भी आप जरूर अपने
0: मैं युवा
1: एक्सपीरियंस शेयर।
0: पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं।
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक
0: चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक
1: आप
0: यू,
1: सुन रहे हैं
0: थैंक
1: आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: योग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम में युववाणी का। और आज के इस युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं निशा शर्मा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर

जिंदगी एक राग है, कभी खुशी कभी एहसास है। हर पल को मुस्कुराकर अपनाना ही जीवन जीने का अंदाज है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त निशा शर्मा। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर मंजिल पाने की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन कभी ठहर कर सोचिए, क्या जीवन सिर्फ समय बिताने का नाम है या फिर हर छोटी खुशी को महसूस करने का एहसास है? कभी एक छोटी सी मुस्कान पूरा दिन खूबसूरत बना देती है, तो कभी एक नकारात्मक सोच सब कुछ होते हुए भी मन को खाली कर देती है। यानी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें मिलती है, बल्कि वैसी बनती है जैसे हम उसे जीना सीखते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, एक बारिश किसी के लिए सुकून बन जाती है तो किसी के लिए परेशानी। एक ही रास्ता किसी को मंजिल तक पहुंचा देता है और कोई उसी रास्ते पर थककर बैठ जाता है। आखिर फ़र्क कहाँ है, हालात में, किस्मत में या फिर सोच में? दोस्तों, जीवन केवल सांसों का सफ़र नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखने की कला भी है। कभी गिरकर संभलना पड़ता है, कभी अपनों के लिए बदलना पड़ता है और कभी भीड़ में रहकर भी अपने मन की आवाज़ सुननी पड़ती है। यही तो है जीवन जीने की कला। दोस्तों, जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये हर दिन हमें कुछ नया सीखती है। कभी धैर्य, कभी संघर्ष, तो कभी छोटी छोटी खुशियों की अहमियत। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में छिपी होती है, लेकिन सच तो ये है कि एक सुकून भरी सुबह और चेहरे पर अपनों का साथ आई एक सच्ची मुस्कान ही जीवन को खूबसूरत बना देती है। साथियों, मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें परेशानियाँ ना हों, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद का दीपक जलाए रखता है, वही जीवन जीने की असली कला सीख जाता है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ ले आता है जहाँ सब कुछ धुंधला, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए, ऐसा लगने लगता है सुबह ज़रूर होती है। इसलिए अपनी मुस्कान को कभी कम मत होने दीजिए, अपने सपनों को कभी थकने मत दीजिए और खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी बोझ नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल अवसर है। सीखते हुए और आगे बढ़ते हुए जीना ही है, जिसे हंसते हुए जीवन जीने की कला असली कला है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, जीत सबसे पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है। अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इसी उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ अब समय है अपने ज्ञान और समझ को परखने का। तो हमारा जो है क्विज सेगमेंट शुरू होता है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ AI आइकॉन 2026 कहाँ हुआ है? और आज का दूसरा प्रश्न है, चर्चा में रहा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा? दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में हम आपको इन प्रश्नों के जवाब बताएंगे। नफरत की आंधी कितनी भी तेज चले, मोहब्बत का दिया कभी बुझ नहीं सकता। गोलियों से जिस्म मिटाए जा सकते हैं, लेकिन इंसानियत का फैसला कभी झुक नहीं सकता। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, जो कि भारत में हर साल 21 मई को यह दिवस आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने, शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आतंकवाद केवल जान नहीं लेता है, यह छीन लेता है किसी माँ की मुस्कान, किसी बच्चे का बचपन और कई परिवारों की खुशियाँ। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, युवाओं में शांति और सद्भाव की भावना बढ़ाना और देश की एकता और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना। साथियों, आज देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, भाषण, रैलियां और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या केवल एक दिन जागरूकता फैलाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। इसके लिए ज़रूरत है हम सबके जागरूक और जिम्मेदार बनने की। और दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद की जड़ केवल हथियार नहीं है, बल्कि नफरत, कट्टरता और गलत सोच भी है। जब समाज में प्रेम, भाईचारा और आपसी विश्वास मजबूत होगा, तभी आतंकवाद जैसी बुराई कमज़ोर पड़ेगी। दोस्तों, आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो देश को कोई भी ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। इसलिए हमें शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचना होगा और हमेशा सत्य और शांति का साथ देना होगा। आइए आज इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे और हर हाल में मानवता का साथ देंगे, क्योंकि आतंक डर पैदा कर

दोस्तों, अभी हमने आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या पर बात की जो समाज में डर और नफरत फैलाने का काम करती है। लेकिन अब बात करते हैं उस शक्ति की जो लोगों को जोड़ती है, दिलों में अपनापन जगाती है और दुनिया को एक खूबसूरत परिवार बना देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट की। एक ऐसा दिवस जो हमें सिखाता है कि अपना जो संस्कृति, खान पान, परंपराएं, अलग भाषाएं हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। दोस्तों, ये दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। 21 इसका उद्देश्य है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों के प्रति भाषाओं सम्मान, संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। ये विभिन्नताएँ जो हैं हमारी असली पहचान है,

ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि भिन्नताएं ही हमारी असली पहचान है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता के महत्व को समझाना, विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सद्भाव को बढ़ाना, शांति, सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करना, कला, भाषा, संगीत और परंपराओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, आज के दिन स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में प्राकृतिक

साहित्यिक, सांस्कृतिक, लोक संगीत और नृत्य कार्यक्रम, भाषण, विचार गोष्ठियाँ, कला प्रदर्शनियाँ और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इस कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और व्यंजनों से परिचित कराया जाता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में ये दिवस और भी खास बन जाता है, जहाँ अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान और परंपराएं मिलकर एक सुंदर सांस्कृतिक पहचान बनाती हैं। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है विविधता में ही एकता की असली खूबसूरती छिपी होती है।

दोस्तों, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। उसके पीछे होती है मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। दोस्तों, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आत्मविश्वास आपके साथ हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। इसलिए सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं आज का रोजगार और करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 7150 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 8 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.go.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, www.sbi.co.in पर। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए उनके जवाब जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में हेल्थ AI आइकॉन 2026 कहाँ हुआ है। मैं एक बार प्रश्न को फिर से दोहराती हूँ, हाल ही में हेल्थ AI आइकॉन 2026 कहाँ हुआ है, जिसका सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, चर्चा में रहा प्रोसोपिस जूली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू होगा, और इसका सही जवाब है गुजरात। दोस्तों, याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाती है। हर कोशिश आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। मैं निशा शर्मा आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी निशा शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे धीणेरी बातियां। भेंटवार्ता होगी भेड़ व बकरियों की प्रमुख बीमारियां, बचाव व रोकथाम विषय पर डॉक्टर मनोहर सेन, आप सहायक आचार्य हैं वेटनरी कॉलेज बीकानेर से, इनसे बातचीत करेंगे श्री रामसाय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम धीणेरी बातियां हमारे जयपुर केंद्र से।

Bakyan, Bakyan, Bakyan.

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठे हो।
2: काय करूं दाबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीनेरी बातें। काकी साहब, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी सबली समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातें, धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: साथे साथे बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज का भाई सुनन वाला है और हमारे सामने जगह चौपाल में बैठा है सगला भाई ने भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बा तो देखो
5: बेजही चेत की है भाई।
4: हाँ, और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी, मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहवे और अपन जगह बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहवे है के हरा जगह वृक्ष है भी कटन सु भी ओ तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाइने तापमान तेज हो गया है, तो क्यों ना आपा भैया एक एक पेड़ लगावा आप।
5: बहुत ही अच्छा विचार है ओ,
4: है नी। हाँ, देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आवे के जे हमकी बिरखा वे नी, तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाए नी तो देखो राजस्थान है नी ओ हरो भरो हो जासी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वे थोड़ा कम भुगत सी।
5: सच्ची बात कहो कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे।
4: बिल्कुल
5: है नी, तो फिर तो ये पेड़ रो जो को महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
4: बिल्कुल सर, जिका पेड़ आप महित लगाया बियारो कहन के लाभ आपा ने मिल रही है और आपा अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी, तो ये वास्ते आपा निस्वार्थ हो परार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आपा रो भी भलो है, तो पेड़ तो आपा ने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं है ऐसा के
5: उनरो खासो ध्यान भी राखना
4: ध्यान भी राखना है के पेड़ लगाए एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी रही, पूरी जिम्मेदारी भी आपा नहीं उठावनी है। जद आपा जिम्मेदार बन सा नहीं जद ये देखो जो पेड़ है नी वो पूरो पनपसी
5: भाई आज रो जो पेड़ है लगाएड़ो वो आपा ने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी।
4: बिल्कुल जीवन देसी सा, और साथ साथ देखो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना अवश्य घर से निकलिया ना, और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलनो है।
5: जी आरखू भाई,
4: हाँ छोटो सा काम है कि आप आपरो ध्यान रखा सा। देखो चौपाल में बैठा जेने आप हथई तो कराई हाँ, और चौपाल में आप विशेषज्ञ भी पधारे तो देखो आज बात कर ला पा भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ, तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं, आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा।
5: सेऊ पहली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप आ बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होड़ वाला प्रमुख रोग है बे किसे किसा है।
6: हरको भाई है बंसी भाई, भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है, पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग, एक होता है गलगोटू रोग, खुर गलन रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं, चेचक रोग है, खुरपका मुंहपका रोग है, ब्लू टंग रोग है, ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं, भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
4: तो सेऊ पहला डॉक्टर साहब हमने बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपकी भेड़ और बकरिया ने इनसू किया बचावे।
6: हरकू भाई और बंसी भाई, ये भेड़

0: बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, यह वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है। उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें, उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें, या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं, वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है, प्रोटीन युक्त घास उगती है, उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
1: जी,
0: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए ये जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने, उनका ध्यान रखें और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए
1: जी।
0: साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है
1: जी। सर छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कहीं होया करे, इन रोग का ही मतलब है भेड़ बकरियां में भी और रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से क्या बचा सके?
0: बंसी भाई, जैसे पड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है।
1: अच्छा।
0: यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला माल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है? जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया, या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया, या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ, या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है, और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है। इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इन रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: भाई क्या उन्होंने मतलब वही अर्खो भाई की साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता जरूरी बात है।
1: बिल्कुल सर, गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूँ की ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए ये रोग प्रति।
0: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है, और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में, जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने, उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है, और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा, उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं, और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है, और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको

0: हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धोकर के फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी
2: साहब। डॉक्टर साहब, बकरियां रो प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव रा उपाय भी आप महाराज जी का पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणु से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा श्राव आता है, वो श्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं। अच्छा। तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक इलाज करवाना चाहिए और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है। अच्छा। तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है। इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं। तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
2: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से पहली रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल सा। और अब जी को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
2: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
1: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भाई आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे

0: शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
1: इणबेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल की प्रस्तुति धीनेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सैन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरियां री प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम।
2: हरखू भाई जिज्ञासा जी की जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
1: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारू डॉक्टर साहब सो आगलो सवाल मैं कर रहे हैं, खुरपका मुंहपका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग सु पशुआ ने किन भात बचा सके।
3: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में 2 बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम जिसमें साल में 2-2 बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखिए जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे, ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
1: बिल्कुल सर। और मक्खियां जद ही बैठ सी जद बाड़े रे मायने गंदगी हुए, साफ सफाई नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुए जने देखो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग से क्या बच सका हाँ और इन बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
3: संक्रामक रोग काफ़ी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं, वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, PPR रोग बताया, FMD बताया, खुरपका मुंहपका है, तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई अगर रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीद कर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ, पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, 1 महीने तक उनकी निगरानी करें और जब 1 महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: 100 बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
1: बिल्कुल।
2: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई रे साथ साथ है टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
3: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है, बचाव

0: का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। अच्छा। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे, अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
1: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगाना चाहिए, और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा 2-4 दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
2: टीको लगवाना है,
1: जरूरी है।
2: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो, और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल है।
0: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ, और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना ये 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
2: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ। हाँ,
1: बिल्कुल बताओ
2: सर। तो आपने और अपर जितना भी श्रोता है, हमारा पशुपालक भाई है, बीएनबी में मेरा जगह अंश है, मैं सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
3: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था। उससे पहले शायद 1 या 2 विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे, और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था, और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज़्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही, और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी, तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है, और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में, और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें, और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिंजेंसी में हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय के

उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिज़ल्ट दिया, मेरे को भी लगता था कि ठीक है, हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया। पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहाँ से सुनने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी LSD वैक्सीन की, उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का, उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया। और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नज़रों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टॉफल GRE क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू

0: नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का, उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया, और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। तो ये एक विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नज़रों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टॉफल GRE क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना AC के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो। इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखू भाई, देखो सा सुमंत व्यास जी का उद्बोधन सुना नहीं मैं, इया लागे कि भाई देखो सा जन जन सु जरूरी बातें बता रिया था।
2: बिल्कुल सर, अब देखो सा वक्त इशारो करण लाग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका समय री कदर सगला ने करनी चाहिए
2: तो मैं आपने बता दूं सा, आज चौपाल रे मायने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु पधार्या सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन, और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरियां री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब, आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालक ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सारे उम्मीद देवा आपने धन्यवाद और करा
3: राम राम, राम सा
4: राम राम सा।
5: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें, कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा, घणान घणा राम राम सा।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
7: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
8: काई करूं दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
7: आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ियोरी सबड़ी समस्या रो समाधान।
9: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे भी बातिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बाता।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातियां। भेंटवार्ता भेड़ व बकरियों की प्रमुख बीमारी बचाव व रोकथाम विषय पर बातचीत कर रहे थे श्री रामसाय हर्ष और श्री चंद्रशेखर जोशी, श्री डॉक्टर मनोहर सेन जो कि सहायक आचार्य वेटनरी कॉलेज बीकानेर से हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6 बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज आपकी सुनिएगा पुरानी फिल्मों से। तो लीजिए, आज पहला गीत होगा मुकेश की आवाज़ में। ये गीत है फिल्म कभी कभी से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। तो लीजिए सुनिएगा अगला गीत, फिल्म रजिया सुल्तान से ये गीत होगा कबन मिर्जा की आवाज़ में।

Akashwadi at 90. आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत पर अगला गीत सुनिएगा फिल्म महबूबा से, और ये गीत है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا, یہ ہم سے زیادہ.
1: सौदागर फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और सुदेश भोसले की आवाज़ में. आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत. लीजिए अगला गीत सुनिएगा फिल्म कर्ज से, और आवाज़ होगी मोहम्मद रफ़ी साहब की.

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आए।

0: आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्यवाही तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली

0: सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में

0: बहुत से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजेड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में RUB बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलग जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से

0: शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो, लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावन ने बचावन सारू आज गोडावन दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वह काल सवार जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है। वठे वे भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आगाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। इन पाछा श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थवर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माए नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। इन पाछे वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल हुए वाला सरकारी कर्मचारियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माए खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव सारू वार्डां रा पुनर्गठन और वोटर लिस्टां तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू

0: जिलारा नारनोद गांव मायखा बड़नवी सा सागे बातचीत करता था का आ जानकारी दीनी वह कहो का चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रिची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माय कहो का सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपटरा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो चावेला।
1: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया, आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
0: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला माए खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा माए सिलिकोसिस री बीमारी अरमारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी मत है खुद संज्ञान लिनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीकाओं खुदाई रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलकां री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत तों जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउण तय करण और सिलिकोसिस रा मरीजां रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावण बाबत ही कहो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावण ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनतारा प्रति संवेदनशील भैर काम करण सारू कहो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा मत है खास ध्यान देवण री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावण वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकाओं लागू करण मत है जोर दीनो। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनों मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर माए आखा दिन आंधी चालनों परेशानी रो सामो करनु पड़ियो। राज्य माए लारला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान श्री गंगानगर माए 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। वह तेज गर्मी न ध्यान रखता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर जनताओं एहतियात राखण री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहवेला। हालांकि काल राज्य रा उत्तराध आतुणी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भेड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फैल रही है। वे आज जैसलमेर माए राखी जिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
2: और जो मुझे जानकारी दी गई है इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
0: ई मौके वन मंत्री गोडावण री मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण न बचावण रे बारा माए स्कूलां माए राखी जी होणा जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण न बचावण सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई 2 अगस्त ताई होवण वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करतियो चियो है। आ माए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओर रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल होवण वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वे बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप माई तमगा जीत और देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। मुख्यमंत्री

लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र में सिखावन ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओरों दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल सरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर में फेवन वाली तीन दिन री ई होड़ में दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आ होड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग में फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हल्का में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो जावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि इनु माटी कलाकार सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला। श्री टांक कहो कि राज्य में माटी कला रा सगला कलाकार और कामगारा रा आर्टिजन कार्ड बनावन सारू बोर्ड री ओरू शिविर लगाया।

0: अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी वह कहो कि इनु माटी कलाकार सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला श्री टांक कहो कि राज्य में माटी कला रा सगला कलाकार और कामगार रा आर्टिजन कार्ड बनावन सारू बोर्ड री ओर शिविर लगाया जावेला वह बतायो कि प्रदेश में बिजली चालन वाला 5,000 चाक और मिट्टी गूंद वाली मशीन दी जावेला इस आगे मौजूदा साल में माटी कला रा 100 प्रशिक्षक तैयार कराने की तय करी चियो है राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओर आज जयपुर में बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी इनमें नुआ एआई टूल्स री सिखावण दी री जी ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य उन जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3,00,000 लोगों ने फायदो मिल चुकी है आ पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगेकरण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है इरा तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माय जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800-117800 आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ली राव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगां सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी ची इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं अनिल सिंह और राकेश कुमार जोशी

0: नुकसान है वह चीज रो कई फायदो भी होया करे और अपना जका माई था और अभी आप देखा कि भी खेती बाड़ी रे मई आगे बढ़न खातर घनी इसी बातें हैं जिन्हें आप गर्मी से जुड़ी रखा और गर्मी में आप बातें करा काम करा तो आप आने वाली टाइम रे मई फसलों में ज्यादा उत्पादन ले सका।
1: आप देखो खेती बाड़ी वाला आदमी हाँ तो गर्मी रे मौसम में जिकी जुताई करा करानी बा जुताई आपने मिट्टी खातर और आने वाला फसल खातर बहुत ही चोखी मानी जाए क्योंकि अपन ध्यान है कि आ गर्मी री जी की जुताई है आ रबी फसल री कटाई रे बाद और बरसात शुरू होने से पहला गर्मी रे मौसम में जी बार गर्मी रे मौसम चल रही है ई बगत आपन ने करनी जरूरी है और ई बगत आप देखा कि वातावरण रो जो तापमान है वो घणो होया करे और बी कारण मिट्टी पलटने से सूरज री तेज किरण जी की है वे खेतरी ऊपरी जी की मिट्टी परत है बिने चोखी तरह से सुखा दिया करे और सबसे मोटी बात आ है कि मिट्टी में जिका भी कीटाणु रोगाणु या कोई वायरस है या कोई हानिकारक कीट पतंगा बिहार अंडा है बिहार लार्वा है बिहार सगला ने खत्म कर परो और मिट्टी रमाया एक हवारो जी को संचार है वो कर दिया करे।
0: तो देखो थे तो सारी सगली जकी बातें है वो बताई है और मैं सरु आपने जकी गर्मी री जुताई है खेत में वह करनी नहीं भूलनी चाहिए और वह सागे सागे राकेश भाई आपने यो भी चीज ध्यान देना चाहिए कभी आप जकी खेत री जुताई करा आजकल मोटे तौर पर आप ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करा हाँ और ट्रैक्टर से जकी खेती बाड़ी करा तो वह में जो प्लाऊ हल हो एक रहे वह सो आप जुताई करा ताकि वो हल की है कि खेती बाड़ी में आप जुताई करा तो वह सो मिट्टी पलटती चाले और पलटती चाले जकी थे बताई नहीं कभी जका कीटाणु है आप कह सका कभी का अंडा है जो कि अपनी आने वाली फसल ने नुकसान पहुंचा सके तो वह सगड़ा खत्म हो जाओ और आपने खेतरी मिट्टी यानी सूरज धूप सु तपर खरो सोना मन
1: मिट्टी भुरभुरी हो जाया करे मुलायम हो जाए खरपतवार तो नाश हुई है और सागे सागे एक और है वर्षा जल रो अधिक संचयन करने खातर भी आ मिट्टी जी की है बा पानी ने सोखने तैयार हो जाया करे
0: और एम जो वायु रो संचार है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए जैसे आपने जकी पैदावार आप ले फसल री बुवाई
1: करा
0: अच्छी तरीके से ऑक्सीजन यानी हवा मिल जाए और वह अच्छी बढ़वार करे और जकी फसल है वह कीट रोगा सु नियंत्रण में तो सहायक वही हुए और वैसे आपने कम खर्चा रहे मई ज्यादा उत्पादन मिले और दूसरी वायु संचार हुए और आपने रासायनिक पदार्थ रो कम से कम छिड़काव करना
1: तो आज की प्रक्रिया है नी ग्रीष्मकालीन ऋतु में आप गहरी जुताई करा आ एक बहुत ही उपयोगी तरीको है इस खेतरी मिट्टी री स्वस्थ और उपजाऊ बना जिया थे बतायो हो लेकिन सबसे मोटी बात है कि खेत जिको इतना दिन सू खेतरी ऊपरी परत जिकी जमोड़ी हुए नी जिकी कठोर हो जाया करे बा सॉफ्ट हो जाया करे मुलायम हो जाया करे तो इन प्रकार आप कह सका कि ग्रीष्मकालीन मौसम में आपने बरसातों पहला खेतरी गहरी जुताई करनी चीज है
0: आपने खेतरी जकी मिट्टी है राकेश भाई वह स्वस्थ भी बने और उपजाऊ भी बने और कीट और खरपतवार नियंत्रण में भी आपने मदद मिले।
1: तो अब थे चोखो सो गीत सुनाओ
0: तो सुना सा यो मीठो सो लोक गीत सा।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालू ग्रामीण भाई बहनों ने राकेश कुमार जोशी
1: और अनिल सिंह खिचटा घना घना राम राम राम राम राकेश भाई थाने
0: राम राम थाने भी राम राम। और देखो गर्मी जी की है, बाप रा तेवर दिखा रही है।
1: देखो गर्मी तो अबार नहीं पड़ती तो कब पड़ती राकेश भाई, और टेम सारू जकी ऋतु आवे नी उनारो आनंद भी लेनो चाहिए।
0: और गर्मी री शिकायत करे लोग बाग, लेकिन आपा गर्मी रा कई फायदा बता सका।
1: देखो फायदा तो हर ऋतु रहा है, पर आपने सकारात्मक सोच रहे आगे बढ़ना चाहिए। यह चीज नहीं सोचनी चाहिए कभी आपने यो नुकसान।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है।

0: रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस

0: ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: तो भैया सुनिया थे ए संदेशा, और अब आपा बात करा सहभागी बीज उत्पादन। खेती उत्पादन बढ़ाने में गुणवत्ता युक्त बीज रो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होया करे, और जे किसान ने शुद्ध, स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वालो बीज समय पर उपलब्ध हो जावे तो फसल उत्पादन में बहुत चोखी वृद्धि होया करे। ये उद्देश्य सु सहभागी बीज उत्पादन की अवधारणा जी की है बा विकसित हुई, और इनमें किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग और बीज संस्थाएं मिल परोर बीज उत्पादन रो कार्य करे।
2: देखो राकेश भाई थे कितनी चोखी बात बताई कि भाई आपा कोई भी खेतीबाड़ी में फसल रो उत्पादन लेवा, पर वह फसल रह खातर आपा ने उच्च गुणवत्ता रो जो बीज होवे नी, तो आपा वह फसल ने घनी तो बीमारियां बचा सका और वह ने जल्दी उत्पादन लेने में भी काम कर सका और सिंचाई री भी आपा ने कम आवश्यकता हो, और आपा कह सका कि भाई कम खर्चा रहे माई ज्यादा उत्पादन लेने खातर आपा ने जो उच्च गुणवत्ता रो बीज ही काम लेना चाहिए। वह ने आजकल आपा सहभागी बीज उत्पादन कर आपा कह सका आत्मनिर्भर मनसका, और एरो मोटो उद्देश्य भी यही है कि अभी अपने किसान भाई बहन ने आत्मनिर्भर बनाए जावे, और आपा कह सका कि भाई खेतीबाड़ी में जकी लागत है नी वे ने कम कर उत्पादन ने बढ़ाए जावे, और जल्दी सु जल्दी जका किसान भाई बहन है वे खुद ही आप रो उन्नत किस्म फसला रो तैयार कर सके और कृषि उत्पादन आय ने बढ़ाने में काम ले सके।
1: ई खातिर आपा ने प्रशिक्षण भी लेना पड़ सके। यदि आप सहभागी बीज उत्पादन प्राप्त करना चाहवा तो कृषि वैज्ञानिक है बे किसान ने बीज उत्पादन शुद्धता बनाए रखन और रोग नियंत्रण खातर भंडारण खातर प्रशिक्षण दिया करे। आप प्रशिक्षण ले सका, खेतरी तैयारी कर सका, खेत ने अच्छी तरह से तैयार कर प्रो और उचित दूरी मथे और उचित विधि से आप जब बुआई करा तो आप चोखो उत्पादन ले सका। फसल प्रबंधन है, समय पर सिंचाई करनी है, उर्वरक का संतुलित उपयोग है, खरपतवार नियंत्रण है, कीट और रोग प्रबंधन द्वारा भी आप उचित बीज से अच्छा उत्पादन आप ले सका।
2: और देखो आप एक मोटे तौर पर और बात कर सका राकेश भाई कि भी आप सहभागी बीज रो उत्पादन कर लेवा तो मेरी कटाई किया करा, मेरे भंडारण किया करा, ए खातर भी आपने सावधानी बरतनी जरूरी है। और जका किसान भाई बहन मोटे तौर पर भंडारण करना चाहे वे ध्यान रखे कि बीज ने सुकार ही सुरक्षित भंडारित करे जावे और वे खातर प्रशिक्षण भी ले सके।
1: और सहभागी बीज उत्पादन रो लाभ भी घना है, गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध हो जाया करे किसान भाइयों ने, लागत में भी कमी, बाहरी बाजार से बीज खरीदने की आवश्यकता अपन कम होया करे जे आप सहभागी बीज उत्पादन खुद कर लें तो, किसान रे आय में वृद्धि हुए, स्थानीय किस्मों रो संरक्षण होया करे ये विधि से आप बीज उत्पादन करा तो, और वैज्ञानिक जानकारी रो प्रसार प्रसार भी नई तकनीक के माध्यम से आप कर सका, और आत्मनिर्भर गाँव और क्षेत्र बीज रे मामले में गांव जिका है वे आत्मनिर्भर बन सके।
2: और राकेश भाई सागे सागे जकी आपा कह सका कभी सहभागी बीज रो उत्पादन करा, जब छोटी मोटी जकी सावधानियां है वे भी रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपना जो को बीज है वो आपा कह सका कभी आपा ने उत्पादन देने में कमी रख सके। वे सारू के एक आपा ध्यान देना चाहिए कि भाई जकी फसल रही जकी किस्म आपा बीज रो रूप में मनानी चाहवा तो वह में दूसरी जकी किस्म है उनारो मिश्रण नहीं होना चाहिए, और आपा जका रोग ग्रस्त पौधा है उन्होंने टेम सरो निकाल देना चाहिए। तो ये मुझे की बात है उन्होंने आपने सावधानी रखनी चाहिए, और आपा फिर सहभागी जो बीज है वह उत्पादन कर आपा खुद ही मोटे तौर पर आमदनी बढ़ा सका
1: देखो फूट इसी बात आपा करिए फूटरो सो गीत सुना भाया ने
2: तो सुना सा मीठो सो लोकगीत।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी, जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अनिल भाई, देखो अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और खेती उत्पादन में उर्वरकारों महत्वपूर्ण भूमिका है अबार। ये भगत आप देखा, किसानों ने उचित मूल्य और गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपने जी की भारत सरकार है, वह भारत सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना शुरू करी है और ई योजना का उद्देश्य भी वही है कि किसानों ने सस्ते गुणवत्ता युक्त और आसानी से उर्वरक जिकी है बिना उपलब्ध कराना।
3: तो देखो राकेश भाई, अपनी जिकी खेती बाड़ी जुड़ी है और आप वैसा काम करा तो टेम सरू आपने किए कि अपनी जिकी सरकार है वह आगे बढ़ाने खातर घनी योजना ले रहा है और आप उन योजना से जुड़ा और आप उन योजना की जानकारी ले अच्छो आगे काम करा आगे बढ़ा तो खुद तो आगे बढ़ा ही बढ़ा हाँ, अपने देश ने अपने समाज ने भी आगे बढ़ाने में पूरा पूरा सहयोग करा।
2: लेकिन आपने जिकी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, इन अंतर्गत किसाना ने भारत ब्रांड नाम से उर्वरक उपलब्ध कराओ कराने रो प्रावधान है
3: और एर जका मोटा उद्देश्य रखा गया है वो किसाना ने जकी सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना।
2: हाँ, कीमत नियंत्रित रखनी
3: और कृषि लागत कम करना, क्योंकि उर्वरक जकी आपा उपलब्धता करा देवा तो वा

0: आसानी से सस्ते दर पर उपलब्ध होगी तो कृषि पर लागत कम।
1: और एक उर्वरकारी जिकी काला बाजारी है नी बिना रोकनो,
0: और जकी आपा कह सका कभी मिलावट रही उर्वरक मिले उनासु भी रोकनो, और जकी गुणवत्ता युक्त उर्वरक जकी उपलब्धता है मैंने सुनिश्चित करनो। और सब मोटो जको काम है राकेश भाई वो है योजना रो किसानारी आय में वृद्धि करना।
1: हाँ, उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ानो, आय में भी वृद्धि करनो। योजना की विशेषता है कि भारत ब्रांड उर्वरक सरकार ने विभिन्न उर्वरकारों एक समान भारत ब्रांड रे अंतर्गत उपलब्ध कराणो है। जी हाँ, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके और उचित मूल्य सरकार सब्सिडी देख परो किसाना ने कम कीमत माथे उर्वरक उपलब्ध कराने प्रावधान भी ई योजना रे अंतर्गत है।
0: और पूरे देश रे में उपलब्धता हो खतर की है कि सरकारी जकी समितियां हैं और सागे सागे उर्वरक केंद्र है उनारे माध्यम से देश भर में एरो वितरण किए जानो सुनिश्चित करे जा रो। और गुणवत्ता नियंत्रण भी करने खातर एमें उर्वरकारी जकी गुणवत्ता है वह भी नियमित जाँच करी जानी बहुत ही जरूरी है और वह खातर नियम भी बनाए जा रहे।
1: तो ये सुनगा ये है कि एक तो अपन खेती बाड़ी ने मजबूती मिल सी और खाद उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिल सी, छोटे और सीमांत किसान है बिया ने विशेष लाभ वेला आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था ने बढ़ावो मिल सी।
0: तो देखो कितनी चोखी बातें हैं योजना रमाई परियोजना रो जो को लक्ष्य रखे गए है वो मोटे तौर पे किसान ने आगे बढ़ान रो है। आपा सु जुड़ा और आपा भी समझा के भी परियोजना ने आपा आगे बढ़ाने का खतरा अपना जगह भाई बंधु है उन्होंने भी जानकारी सु अवगत करावा।
1: अब देखो भाई ने भी सुनावा एक और चोखो सो गीत।

0: अब्दुल शकूर सुलेमान ने गायडो फूटरो सो गितड़लो सुनियो। और नमामी भाई देखो, एक आप अखन एक बात और है करनी है बा कि जल स्वावलंबी अपना हर गांव बनना चाहिए। हर गांव में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। पुराना जी का भी स्रोत है, बेबीचों की तरह से आप काम में लेवा और नई नई तकनीक माध्यम से भी पानी की बचत करा।
1: जल है तो कल है राकेश भाई, ये बात ने अपन सगला ने स्वीकार करना पड़े। और जल रो महत्व है वो खासकर आपने ए गर्मी रे माई ठा पड़े कि भाई जल बिना आपनो एक दिन भी निकलनो बहुत मुश्किल है। तो आप सबसे पहला तो यही देखा कि भाई आपनो जकर प्राकृतिक संसाधन है जल रहा, उन्होंने आप मनाए रखन रो काम करा।
0: बिल्कुल,
1: अबार गर्मी रे बाद में बिरखा आसी तो आप आबार ही लाग जवा कभी अपना जका कुआ बावड़ी है उन्होंने साफ सुथरा करा, घर रे टंक ने साफ सुथरा करा ताकि बिरखा रो जको जल है वो आप घर रे में भीतर संचित कर लें और बार रो जको खेत रो है पानी है वो खेत रे में करा और गाँव रो जको पानी है वो जोड़ कुआ बावड़ी में आप इकट्ठो कर लें ताकि अपने पशुधन रहे और आपने भी सिंचाई के काम आ जाए।
0: अधिक से अधिक पेड़ लगाने से भी कहीं हुए कि आपने मिट्टी में नमी बनी उड़ी रहे और हरियाली जट ज्यादा हुए बट बरसात भी ज्यादा आया करे। खेतीबाड़ी में जी सिंचाई की पद्धतियां हैं वे भी आप नई तकनीक जी भी फवारा सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई है, बीरो आप उपयोग लेवा और जन भागीदारी सु गाँव में जिको भी जल संरक्षण रो आप कार्य कर सका जनता रे सहयोग सु बिना आप जागरूक रे प्रो सगला ने सागे ले रो काम करा जने आपा जल रे प्रति स्वावलंबी बढ़ सका।
1: राकेश भाई तेजो की बात बताई कभी आपने जो की खेती बाड़ी में भी जो की नई तकनीक आई है सिंचाई पद्धति री वो ना अपनानी चाहिए पर वह सागे सागे अपना जगह किसान है वह जागरूक भी है और आपा कह सका कभी परंपरागत जो की खेती बाड़ी है वह सु हट और जो की खेती बाड़ी करने लग रही है जिया फलां री खेती है, फूलों री खेती है, सब्जियां री खेती है और आप औषधीय पौधा री खेती है तो वह आपने जो की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सु अपना एक बीघे मैं जकी खुली सिंचाई पद्धति आप खेती बाड़ी कर सका बट आप नई जकी थे पद्धति बताइयो उन्हें आप यानी एक मुरबे दो मुरबे पर खेती बाड़ी कर सका तो आप ये नई तकनीक अपनावा और अपनी जकी परंपरागत खेती बाड़ी है वह में भी आप परिवर्तन करा
0: परिवर्तन
1: और नगद आमदनी लेवा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखो सिंजर भगत है कार्यक्रम में भाया अडी रखे एक भजन री तो आज भजन सुनावा गणपत लाल डांगी और साथियों गायड़ो मारा राम रघुनाथ।

0: खराब।
1: देखो अनिल भाई, आपां देख रहे हैं कि घड़ी जी को है भाई इशारो करे है कि अपने कार्यक्रम में भगत पूरा हो रही है। काल नुआ गीत नुई बाता सागे फिर हाजिर हुआ, सीख लेवा अपने साथियों। सीख देव सा अपने साथी राकेश कुमार जोशी,
2: और अनिल सिंह खिचड़ना है
1: मोकला
2: घना
1: मोकला राम
2: राम
1: राम।
2: राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे अनिल सिंह और राकेश कुमार जोशी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं और अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला गीत सुनिएगा उषा टंडन की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत आप सुनिएगा, हम दिल दे चुके सनम से। ये गीत होगा उस्ताद सुल्तान खां और शंकर महादेवन और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा मनाडे की आवाज़ में। ये गीत होगा फिल्म बावर्ची से।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस सफ़र में अगला स्टेशन होगा फिल्म हीरो से ये गीत होगा अनुराधा पौडवाल और मनहार की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म बातों बातों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है लोक संगीत का। लीजिए लोक संगीत में सत्तार खान और रमजान खान की आवाज़ में पहला ये लोकगीत सुनिएगा।

सीमा मिश्रा और सतीश की आवाज़ में अभी आपने लोकगीत सुना। इस गीत के साथ ही लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात आप सुनिएगा न्यूज़ @9।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत, मध्य पूर्व, यूरोप

0: उप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of

0: 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
3: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति

0: के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
1: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़

0: में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's 5-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here, who respect

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म पहली से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज़ में अगला गीत होगा फिल्म टू स्टेट से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब समय है सुगम संगीत का। लीजिए सुगम संगीत में पहली आवाज़ सुनिएगा मैताली सिंह की।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारु चैनल है। रात्रि के 10 बजने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे राजस्थान दर्शन।
1: मैं शक्ति सिंह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण

0: राष्ट्रपति वक्तव्य दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी।
1: और अब सुनिए राजस्थान दर्शन।

0: श्रोताओं नमस्कार। नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम आपको अपनी मरुभूमि के ऐसे कलाकारों से, ऐसी डिग्निटी से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र के लिए महान कार्य किए हों, इस क्षेत्र की कई उपलब्धियां हासिल की हों। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे पद्मश्री, यानी अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, माननीय तगाराम जी भील हमारे साथ हैं। और बचपन से लेकर आज तक अनेकों संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और इनका संघर्ष और इनकी कला से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। तगाराम जी, हम बहुत बहुत अपने श्रोताओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: और हम शुरू करते हैं आपका वो बचपन। देखिए तगाराम जी, जब बचपन होता है ना, तो माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि ये पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, कोई अफसर बने, लेकिन आपने बचपन में ये अलगोजा पकड़ा। तो ये क्या परिस्थितियाँ रहीं कि आप अलगोजा आपके हाथ में कैसे आया और कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी?
1: जी हुकुम, मेरी जब कम छोटी उम्र में, मैं जब 6-7 साल का था, तब से मेरे पिताजी के पास एक ऊँट था और 4-5-7 बकरियां

0: थी और एक अलगुजा जोड़ी थी जो पिताजी पहले पुराने टाइम में लाए थे, वो कोई सिंध से मंगाया था पाकिस्तान से, तो वो अलगुजा मेरे पिताजी बजाते। ये क्या कि पहले बनते ही उधर सिंध में ही थे,
1: अच्छा।
0: तो मैं वो बकरियों के साथ मेरे को पिताजी भेज देते थे, और मेरे पिताजी क्या कि लकड़ी ऊंट पे लकड़ी भेजते थे शहर में लेके आते थे। उस टाइम में मतलब बहुत 70 की बात कर रहा हूँ, 70-71 की बात कर रहा हूँ,
1: हाँ
0: ठीक है ना। तो उस टाइम में मैं क्या कि पिताजी के अलगुजे रखे हुए, तो छुप छाप उठा करके बकरियों के साथ
1: ले जाते थे।
0: ले
1: हाँ
0: जाता
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी माता जी है वो मेरे को कहती थी कि बेटा ये तुम, तेरे पिताजी बाप से आएंगे तो अगर तोड़ दिया तो उसको तुम तुम्हें मारेंगे। तो मैं को नहीं तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते मेरी वो टाइम में मैं बकरियों के साथ बकरी चराते हुए खेलते हुए उस टाइम में 3-4 साल की उम्र में मैंने
1: शुरुआत की थी।
0: शुरुआत की।
1: अच्छा, जब आपने अलगोजा बजाना शुरू किया था तो आपको क्या उम्मीद थी कि ये कला एक दिन हमको उस पुरस्कार को दिला देगी जिसके लिए लोग यूँ कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं तब भी नहीं मिल पाता। क्या उम्मीद थी कि ये कला आपको कहाँ तक लेके जाएगी?
0: तो उस टाइम में तो मैं 6-7 साल की उम्र कितनी होती है उस टाइम मैं ये सोच भी नहीं सकता था। वो तो मेरे लिए एक खिलौना था कि मैं खेलता था उसके साथ, जो बजाता था मेरे पिताजी, मुझे अच्छा लगता था ना, तो मैं भी उनको कोशिश करता था कि मैं भी बजाऊं। तो इस तरह से ये कहानी चलती रही। और मैं जब 3-4 साल तक मैंने मेहनत की, तो 10 साल की उम्र में मैंने मेरा सांस वगैरह वो लेना, सांस को चलाना सीख गया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, जो औरतें शादियों में गीत गाती हैं, जब कभी शादी होती थी वो शादियों में बैठ जाता तो उनका गीत गुनगुनाता था, तो वो गाते गाते थोड़ा गीत भी गुनगुनाने लगा 4 साल के टाइम बाद में। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन जो शुरू हुआ, जैसे मैं 10-12-13 साल का हुआ तो फिर मेरे को पिताजी कभी लकड़ी तोड़ने भेज देता था तो भी साथ में रखता था। तो कभी पत्थरों का, जब 15 साल का हुआ तो फिर पत्थरों का काम था, पत्थर भी तोड़ता था तो भी मैं अलगुजा साथ में रखता था। जहाँ भी बकरियों में जाता, पत्थर तोड़ने जाता, कहीं भी जाता, मैं साथ में रखता था। इतना शौक हो गया था इनसे मेरे को।
1: मतलब आपका अलगोजा के प्रति जो लगाव था
0: जी
1: और जो साधना थी,
0: जी
1: और वही कारण रहा कि आज भी अलगोजा आपके साथ है और दुनिया में आपने इस कला को यूं कहें कि अपने अलगोजा के माध्यम से पहचान दिलाई है। अच्छा, थोड़ा हम इस वाद्य यंत्र की बात करें
0: जी
1: तो ये क्या है? हम जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं तो ये अलगोजा एक बांसुरी जैसा देखने में होता है, तो बांसुरी में और इसमें क्या फर्क होता है?
0: बांसुरी का जो होता है ना, वो छेद ऐसे होता है जैसे यूं बजाते हैं, यहाँ पर होता है यहाँ पर। और इसका जो, जैसे इधर मुंह बना है, इसकी जीभ भी बनी है इधर, जैसे सांस लेने के लिए ये भी बना है, नाक भी बना है। तो ये मतलब पूरा जैसे गला और जुबान और सब कुछ इसके अंदर उस हिसाब से
1: ओ
0: बन गया
1: बिल्कुल।
0: है। तो इसका एक गला बन गया है इसके अंदर, मतलब हवा जैसे सांस डाल दिया, तो इस तरह से ये हो गया।
1: अच्छा, बांसुरी तो सिंगल होती है, ये दो एक साथ होते हैं यंत्र, वाद्य यंत्र।
0: हाँ
1: अच्छा,
0: ये दो,
1: दोनों में क्या अंतर होता है?
0: दोनों में एक दूसरे का सहारा बनता है। ये जैसे ये पकड़ के रखता है,
1: हाँ
0: बैस को पकड़ के रखता है, तो ये साथ में सुर को पकड़ता है,
1: ओहो
0: मतलब सुर इधर उधर ना हो तो इसको पकड़ के रखता है। तो उसको उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों का साथ में एक बीन जैसा आवाज
1: अच्छा
0: निकलता
1: अच्छा
0: है।
1: दोनों की अलग अलग धुनी होती है ना? अच्छा, दोनों एक बार बजा के बताएं कि क्या अंतर
0: जैसे
1: है इनकी धुनियों में।
0: ये बहुत सा जैसा होता ना, हा, तो ये तो नीचे की सा चलाता है, ये ऊपर वाली,
1: ओ
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: मतलब ये उच्च स्वर और वो
0: हाँ
1: जो लो स्वर होता है, बेस
0: हाँ
1: जिसको, बिल्कुल ठीक कहा।
0: तो क्या कर, जैसे एक बड़ा आदमी गा रहा है, एक बच्चा गा रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो उस तरीके से ये राग ऊपर नीचे,
1: बिल्कुल।
0: एक ऊपर की सरगम एक नीचे की सरगम।
1: अब कौन सा जो सुर है, गाना कोई निकालना है इसके माध्यम से, तो आप बदलते हो कि ये उधर वाले में बजेगा, ये इधर वाले में। बहुत कठिन कला है ये,
0: हाँ मतलब इसमें भी हवा को कंट्रोल से पूरा
1: कंट्रोल
0: हवा
1: दोनों में
0: देना,
1: अलग अलग करना।
0: दोनों में हवा कंट्रोल से देना
1: बिल्कुल।
0: पड़ता है।
1: देखिए श्रोताओं, जो ये दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग, इनकी ध्वनियाँ, एक में बेस है, एक में यूँ कहें कि जो उच्च स्वर होता है वो है। अब ध्वनियों को दोनों एक ही मुख के माध्यम से दोनों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करें, जो देखिए कोई भी वाद्य यंत्र होता है तो बिना गुरु के उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है।
0: सही बात है।
1: तो आपका, हम गुरु आप किसको मानते हो? ये जो बेसिक चीज़ें किसने सिखाई सिखाई
0: जैसे
1: आपको?
0: गुरु तो ऐसे शुरुआत

0: में माना तो पिताजी गुरु है, क्योंकि अगर पिताजी नहीं बजाते तो मेरे को मिलता ही नहीं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो गुरु तो वही हो गए, लेकिन एक विद्या गुरु भी होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जैसे मैंने जब बजाना सीखा, जब 17-18 साल की उम्र हो गई मेरी, तो उसके बाद में जब मैं किसी ने शहर में सुना कि भाई कोई अलगुजा इधर बनाता है बजाता है, तो उस टाइम एक धना धने खान एक बांदा खुयाड़े से एक आता था, वो भी बजाता था। तो मेरा भी नाम सुना तो एक दिन क्या कि अपने जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभुदान जी रत्नू, उस टाइम मैं नेहरू योग केंद्र में वो कोई प्रोग्राम करवा रहे थे, तो उस टाइम मेरे को 15 अगस्त के मौके पर मेरे को बुलाया, और वो अकबर खान जी मंगनियार थे, ये आलम खान दरबारी, वो उनको उनके साथ वो लेके आया, और अकबर जी और दोनों में पता नहीं वहाँ में हमारे ढाणियों में कहीं रहते थे हम, वहाँ मूल सागर से बाहर जंगलों में ढाणियों में रहते थे, घर नहीं था हमारे पास, पिता के पास घर था नहीं, कुछ नहीं थे, ऐसे झाड़ियाँ काट करके झुपड़ी बना करके जंगल में ही बैठे होते थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पूछे कि आपका बेटा के अलगुजा बजाता है, तो हाँ तो कहाँ है, तो वो तो बकरियों के साथ में। तो मैंने को कहीं वहाँ से ढूंढते ढूंढते देख वहाँ ढूंढ लिया, और तो फिर मेरे को बोला कि आपको प्रोग्राम में ले जाएंगे वहाँ पर, आज 15 अगस्त का प्रोग्राम है, कलेक्टर के सामने प्रोग्राम करना है। तो मेरे को भाई प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो प्रोग्राम अलगुजा बजाना, तो अच्छा, और तो कुछ नहीं, और मेरे को प्रोग्राम नहीं आता, अलगुजा में बजा लूंगा। तो इस तरह से मैंने बात किया, क्योंकि समझ में नहीं था,
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम था ही नहीं उस टाइम। तो फिर वो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे 1981 में।
1: ओ, बहुत पुरानी बात है।
0: हाँ, तो उसी टाइम 81 में ही फिर वो अपने डेजर्ट फेस्टिवल, वो भी
1: उसकी शुरुआत हो चुकी थी।
0: तो फिर 82 में मेरा नंबर लगा उसमें।
1: अच्छा, वो 15 अगस्त का जो आपने बताया, पहली बार आपने कलेक्टर साहब के सामने जो अलगोजा बजाया था, तो उस समय कोई हिचक थी, और कौन सी ध्वनि बजाई थी, थोड़ा हमें उसका याद है आपको, क्या बजाया था आपने
0: उस टाइम में? ये तो जैसे मोरूबाई, ये नए नए गीत उस टाइम, पुराने गीत यही चलते थे, मोरूबाई, एवड का गीत है मखणो मखणो डोरे मखणा डो थार खेत में खेजड़ियो मखणा दो,
1: वो वाला
0: ऐसा, क्योंकि ये एवड चराते समय ये बजाया जाता है, ये सभी जो
1: मतलब जो हमारे लोक गीत हैं राजस्थान के, उन पर आधारित वो ध्वनियां थी।
0: जैसे
1: तो ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएंगे, वो जो पुरानी लोक धुने थी जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, वो जो कहते हैं माखड़ियों या सुनाओ थोड़ा सा।
0: तो ये मतलब जो एवड चराते, भेड़ बकरियां गाय भैंस चराते समय ये गीत गाते चलते थे वहां पर, तो मखना सुना था, दो मखना दो, मारे डिबियो ढल गई छांगड़ ली रे मखना दो दो छांगड़, मतलब वो
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत ही खूबसूरत। देखिए हर कोई इस ध्वनि पे झूमने लग जाए, ऐसी ध्वनि आपके अलगोजा की। और हम श्रोताओं को बता दें, देखिए ये आपने बताया कौन सा गीत,
1: मखणो
0: मखणो, और इसका अर्थ है कि जब छांग चराते हैं ना भेड़ बकरी, और रेत के पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है कि ढल गई। मारवाड़ी में हम कैसे बोलेंगे, वो ढल गई हमारी
1: छांगड़ी, डिबियो ढल गई, छांगड़ी
0: डिबियो ढल गई,
1: दो रे दो, बस वो ये मतलब चराते हुए समय ये गीत गाया।
0: हाँ तो ये वो खूब इसका, देखिए जितने की लोकगीत हमारे राजस्थान में हैं उनका जो अर्थ समझ लेंगे ना तो और ही उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो उस समय ये गीत बजाया जाता था। अच्छा हम बात करें आपकी कि ये कला, आप फिर डेजर्ट फेस्टिवल आया और डेजर्ट फेस्टिवल के माध्यम से ये कला ना सिर्फ हमारे पूरे देश में गई बल्कि जो बाहर के विदेशी पर्यटक आते थे उन्होंने इस कला को बहुत सराहा, और फिर जब बाहर जाने लगे तो बाहर के प्रोग्राम आपको कैसे मिले?
1: बाहर के पहली बार मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैं 1996 में गया था, तो उस टाइम मैं

0: पहली बार राजस्थान टूरिज्म ने प्रोग्राम दिया था, राजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ थे उठे जैसलमेर में, उन्होंने मेरे को और तृप्ति पांडे जी ने उन्होंने मेरे को भेजा था टूर एक करवा था। तो एक नॉन्थ फेस्टिवल था फ्रांस में, तो उस फेस्टिवल में गया था मैं। तो उस फेस्टिवल में कई कलाकार साथ में थे, तो उस टाइम में वहाँ पर जो लोग सुने मेरा अलगुजा पहली बार सुना ना, तो रात को हमने जब शाम को प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन स्कूल वाले आ गए कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना है, ये बच्चों को दिखाना है कि भाई कैसा है ये हमारे नया नया जो ये अलगुजे वहाँ पर होते ही नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो इसलिए फिर वो स्कूल का प्रोग्राम रखा, तो बहुत ही लोगों ने सराहा, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मान्यता, बहुत ही अच्छी हमारे अलगुजों के लिए, बहुत ही सबके कलाकारों के लिए बढ़िया रही। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है दो एक साथ बजाते हैं तो उनको अचंभा होता है कि दो को
1: कैसे बजा लेते हैं। बिल्कुल
0: बड़ा ही लगा उन लोगों को।
1: और अच्छा तकाराम जी, एक और जो विदेशी लोग, तो देखो आपकी भाषा अलग उनकी अलग, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, है ना।
0: बस
1: अच्छा, कभी उन्होंने, उनके वाद्य यंत्र होते हैं, तो प्रयास किया कि इसके साथ हम कहें कि जो संगत करते हैं ना, ऐसा कभी मौका मिला?
0: हाँ, वो कभी कभी, जैसे अब फिर मैं दूसरे टूर में गया था, 3 महीना रहा था मैं यूरोप में, तो हम वहाँ पर कई अंग्रेज है जो कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, तो वो मेरे साथ बैठ जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: कई साथ जैसे जो गिटार की तरह सारंगी की तरह, ऐसे अपने यहाँ सारंगी कमाचा होता है, वहाँ पे अलग अलग है, तो लोग कई
1: बजाते थे
0: साथ में बजाते थे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगता था।
1: अच्छा, फिर उन्होंने कई जो सीखने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है। तो आपका जो घर है वहाँ पर आप कुछ लोगों को सिखाया भी आपने, तो बाहर के लोग भी आते थे, तो वो कितने दिन में क्या कुछ सीखे गए क्या इस कला को?
0: हाँ खूब। आज मैं जब मूल सागर में पहली बार मैंने वो एक झोपड़ा बनाया था, उसी टाइम जैसे मैं ढाणी में रहता था, तब वहाँ लोग के रास्ता नहीं था, आ भी नहीं पाते थे।
1: हाँ।
0: तब रोड से, रोड पर बनाया ना, तब लोग वहाँ सब घूमने जाते, तो आते समय उनको सबको पता होता था कि यहाँ पर तकाराम अलगुजे बजाने वाला रहता है, तो गाइड वगैरह वो साथ में ग्रुप के साथ वो आते तो आ जाते थे। फिर मेरे साथ एक पहली बार एक फ्रांस का एक बंदा आया था, तो दो भाई आए थे, तो एक वो बांसुरी बजा रहा था, तो उन्होंने देखा कि भैया ये नई चीज है मेरे लिए, उन्होंने सुना तो वो कह रहे मेरे को भी खरीदना है। तो उसी टाइम मैंने अलगुजे बनाने ही शुरू कर दिए थे, मैं खुद बनाता हूँ।
1: अच्छा, आज आप ये खुद बना रहे हो?
0: हाँ, खुद बना रहा हूँ।
1: अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है?
0: ये तो केयर की है, जो है पीली है, वाइट लग रही है, और ये है शीशम की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लकड़ी यहाँ पे मिलती है या बाहर से मंगानी पड़ती है?
0: ये तो यहाँ भी है, लेकिन अभी यहाँ भी कम मिलती है, लेकिन बाहर से ही है। मैं अभी गया था, कश्मीर गया था, तब वहाँ से लेके आया।
1: ओह, कश्मीर का शीशम,
0: पठानकोट से लाया था ये लकड़ी।
1: अच्छा, देखिए तकाराम जी, प्रत्येक जो माँ बाप होता है वो चाहता है कि अगर आपकी जो कला है इसने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, तो ये आपकी परंपरा बने, आपके पिताजी से आपने सीखा, और फिर क्या आपके बेटे भी इसको बजा रहे हैं?
0: हाँ, एक बेटा बजा रहा है मेरा, मुकेश, वो बाकी बड़े वाले तो वो नहीं बजा रहे, वो पत्थर का ही काम करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: मजदूरी पत्थर में ही करते हैं, और एक मुकेश है वो बजा रहा अभी। तो कई बार मेरे साथ भी बजाया है, मैंने कई बार ले भी गया।
1: मतलब ये कला आगे आपके परिवार में आगे और बढ़ेगी और ऊंचाइयां छुएगी। अच्छा देखिए, पहली बार जब आपने डेजर्ट फेस्टिवल, एक बड़ा मंच है, और वहाँ पर जब स्टेज पर गए थे, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या नर्वस थे या खुशी हो रही थी, वो वाक्या बताइए।
0: वो डेजर्ट फेस्टिवल में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ मटके भी बजते थे, ढोलक भी बजते थे। तो जब अलगोचू के लहर चलती थी ना, तो अंग्रेज है वो वहाँ पर बैठे बैठे उठ उठ के नाचने लग जाते थे।
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इतनी, मतलब वो अंग्रेज इसकी धुनी पर लोग आकर्षित होते थे। तो बहुत ही, मतलब इस साज जैसा मेरे को तो लगता है कोई मीठा और साज,
1: बहुत मीठा बिल्कुल।
0: तो इसलिए अच्छा, मैंने अभी जिंदगी में जब से मैंने इसको सीखा है, तब से मैं अभी भी दिन भर यही काम करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ।
1: अभी बना रहे हो?
0: हाँ, मेरे कई स्टूडेंट अभी दिल्ली में भी, 4-5 स्टूडेंट हैं मेरे, वो भी सीख गए। जापान के भी आए थे, वो भी मेरे से 2-3 बंदे सीख गए। अभी स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, कई जगह, इटली में, सब जगह, मतलब क्या बताऊँ, अमरीका, साउथ अमरीका, ब्राजील वगैरह, सब जगह मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो सब सीखते हैं। अभी ऑनलाइन भी मेरे से कभी कभी जानकारी लेते हैं, तो मैं दे देता हूँ।
1: अच्छा, जो हमारे परंपरा

0: लोक गीतों की धुनें तो आप बजाते ही हो, हमारे जो आधुनिक गीत हैं, कुछ देशभक्ति के गीत हैं, तो आपने कौन सी रचनाएं तैयार की हैं? कोई आपको बहुत खूबसूरत जो हमारी देशभक्ति की रचना आपने अगर तैयार की है तो वो सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए।
1: ठीक है, थोड़ा एक लाइन सुनाऊंगा मैं गीत
0: कौन सा आप
1: देश
0: सुनाएंगे?
1: देशभक्ति का। अब
0: मेरे
1: तुझे,
0: वतन के लोग।
1: नहीं, तुझे सूरज कहूँ या
0: अरे वाह, क्या
1: चंदा,
0: बात है। हाँ ये
1: तुझे
0: चलिए सुनाइए।
1: हाँ
0: ये
1: दीप कहूँ या तारा,
0: हाँ ये फिल्मी गीत है, उसकी
1: हाँ
0: अगर ध्वनि सुनाते
1: मेरा
0: हो।
1: नाम करेगा रोशन,
0: रोशन
1: जग में मेरा राज
0: राजदुलाब, चलिए सुनाइए।
1: भुला

0: बहुत खूबसूरत। ये इतनी मीठी ध्वनि जो संगीत है हमारा, हर किसी को झूमने को मजबूर कर देता है। और इतनी अच्छी अलगोजा की जो मीठी ध्वनि आप बजाते हो, इसी के कारण आज ये अलगोजा विश्व के पटल पर और भारत में ही नहीं विदेशों में भी गूंज इसकी सुनाई दे रही है। और आज आप हमारे जैसलमेर के एक पद्मश्री बने हैं, आपको अवार्ड मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है जो सरकार ने आपसे आपको सम्मानित किया है, सचमुच हमें गर्व है आपके ऊपर। आगे की क्या योजना है कि इस आप क्या चाहते हैं कि इस अलगोजा को और ऊँचाइयाँ किस प्रकार से दी जा सकती हैं, आपकी क्या इच्छा है?
1: अब आगे मेरी इच्छा यही है कि अभी तक मैंने जब से अलगोजे बनाने सीखे उसको मैंने को बनाते बनाते 30 साल हो गए। तो 30 सालों में मैंने जो मेहनत करी है इसकी बनाने की वो मैंने अकेले ही करी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है, और कोई मेरा साथी नहीं है। मेरा बेटा है तो वो ठीक है, घर पे रहते हैं, वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बनाने वाला कोई आदमी तैयार है, नहीं है। लेकिन एक आदमी एक मेरे पास है, हमारे भीलों में ही है, एक अरदास नाम है, वो लड़का आया था तो मेरे पास बैठता था, तो वो भी अब थोड़ा बहुत बनाना उनको आ गया है। तो लेकिन वो जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से जब उनसे बनता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने मेरे को सम्मानित किया है, मेरे को भारत सरकार ने जो सम्मान दिया इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और सब लोगों का, यहाँ जैसलमेर के लोगों का, यहाँ के मीडिया के लोगों का, आकाशवाणी जो भी है, दूरदर्शन है, मतलब डेजर्ट फेस्टिवल है, सभी जिस लोगों ने मुझे बुलाया मैं उसका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। और भारत सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये पद्मश्री के लिए सम्मानित किया है।
0: और बिल्कुल, अगर हम आपके जो सफ़र की बात करें जैसलमेर से निकल करके अब तक आपने कितने देशों की यात्रा की है?
1: मैंने कम से कम मैंने हिसाब लगाया, मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 35 देशों की यात्रा
0: 35 देश ये अलगोजा आप लेके गए हो उन 35 देशों में। ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ हमारे जैसलमेर के लिए, इस वाद्य यंत्र के लिए और आपके लिए भी। अच्छा देखिए, कोई भी वाद्य यंत्र जब इतनी ऊंचाइयां छूता है तो एक जो उसके ऊपर प्रति लगाव है जो आपका, तो आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े। अगर जैसे सरकार आपको कोई सुविधा दे, जैसे आपका जहाँ पर घर है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, तो वहाँ आप क्या चाहेंगे, क्या क्या सुविधा आपको दी जाए कि आप आने वाली पीढ़ी जो इसको सीखना चाहते हैं वो वहाँ आकर इस वाद्य यंत्र को सीख सकें?
1: बस मेरी तमन्ना यही है, मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे जैसलमेर जिले में इसमें ऐसा बनाने वाला कोई है नहीं, तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास संस्था है रजिस्टर

0: प्रशिक्षण कराई हुई है, तो क्या है अभी उसको अच्छे से चलाने के लिए मुझे सरकार की मदद अगर मिल जाएगी तो मैं और इसको और अभी 35 देशों की यात्रा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा ये
1: और भी देशों में आगे जाए,
0: और भी देशों में आगे जाए, ताकि अपना ये साज है जो अपने देश का बहुत नाम रोशन कर रहा है, ये सभी जगह ये इसकी मांग है इसकी, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो लड़के बच्चे हैं, मेरे गांव के वासी हैं, मेरे ढाणियों में रहते हैं, आसपास के गांव में रहते हैं, शहर के हैं लोग हैं, जो जिसकी तमन्ना होगी सीखने के लिए, हम वहां खोलेंगे तो सब के लिए वो सीखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल, और जब ये इतना खूबसूरत है, इतनी ध्वनि है, और हम सब चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे और इस मीठी ध्वनि को हम सब महसूस कर सकें। तगरम जी, एक बात और भी है, देखिए कि जहाँ पर जैसे कि ये आपने कहा पहले सिंध में बनता था,
0: हाँ।
1: सिंध से भारत, मतलब ये जो अलग हो गया तो यहाँ भारत, मतलब हम कहें कि राजस्थान के अंदर,
0: हाँ।
1: आपने इसको बना करके जिस तरह से यहाँ पर इसको ऊंचाइयां दी हैं, क्या आपको मालूम है कि जहाँ ये सिंध का जो ये वाद्य यंत्र है, क्या वहाँ भी बजाने वाले हैं, क्या आपके संपर्क में हैं?
0: हाँ, सिंध वाले लोग अभी जो पहले सिंध में बनते थे ना, वो सिंध वाले लोग क्या, वो बलूचिस्तान के लोग है जो वो ज़्यादा बनाते हैं, वो बलूचिस्तान अलग हो गया, अब सिंध में जो लोग है उनके पास भी मुश्किल से मिलता है, तो वो भी बलूच से मंगाते हैं, तो भले सिंध वाले ने मेरे को एक दो आदमियों ने पहले कोई इसमें फेसबुक में लिखा कि भाई आपकी तगरम जोड़ी बनाई हुई भेजो।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा भाई पैसा आप मेरे पास कैसे पहुंचाओगे, तो कहा आपका ऑनलाइन नंबर दे दो मेरे को। भाई नंबर से तो मैं दे नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारे कोई अनपढ़ आदमी हूँ मैं, कहीं उसके CID के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊं, तो मैं को भैया आपका कोई आदमी आएगा यहाँ पर तो मैं दे दूंगा,
1: ले जा
0: सकता है, पासपोर्ट पे कोई आ जाए तो मैं दे दूंगा, बाकी मेरे को,
1: क्योंकि ये इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र है, कई विदेशी लोग जो आते हैं आपकी ध्वनि सुनकर के, वो भी मांग करते होंगे कि हमको बना के दे दो, तो क्या उनके लिए भी आप बना के देते हो उनको?
0: हाँ बिल्कुल, अभी भी एक मेरे पास मैसेज आया हुआ इटली का, वो बस आने वाला 8-10 दिन में, तो उनके लिए मैंने वो उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो एक जोड़ा उनको लिए बना के रखूँगा। और ऐसे मतलब मेरे पास एक पहली बार जब फ्रांस का ऑर्डर आया था, वो उन्होंने मेरे को एक मशीन भी दिलाई थी,
1: अच्छा, बनाने
0: 50,000 की, वो उनको क्या कि पहली बार तो मैंने उसको 5-6 जोड़ियाँ दी थी, तो फिर वो 2 साल बाद आया तो खूब बहुत सारा ऑर्डर लेके आया, तो मेरे को 150 जोड़ी बनानी थी, तो अब वो बोल रहा था कि भाई तू ऐसे बनाएगा
1: तो कब बनेगा,
0: साल भर में भी नहीं बनेगा, तो कोई उपाय है तो उपाय तो मशीन ऐसे हो तो फिर मैं बन सकती
1: जल्दी। ओ, क्या बात।
0: हाँ, तो क्या को फर्नीचर वाली मशीन जो वो मैंने आइडिया लगाया, तो मैं उसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो फर्नीचर वाली मशीन हम उस टाइम में आज से 25 साल पहले से
1: लाए थे आप,
0: लाया था मैं, तो वो अंग्रेज बेचारा वो साथ में ले जा करके मुझे दिलाई थी,
1: और
0: तो
1: उसी मशीन से आज भी
0: उसी मशीन से अब मैं थोड़ा राहत मिली मुझे, क्या बनाने
1: बिल्कुल।
0: के लिए थोड़ा आसान से बनता है, तो फिर मैंने उनको 100 जोड़े
1: बना के दिए
0: मैंने स्पीड से, एक साल के अंदर 100 जोड़ी बनाई थी हमने। उस टाइम क्या मैंने थोड़ा स्टाफ भी लगाया था तो हो गया था।
1: तो ये भारत का वाद्य यंत्र विदेशों में भी खूब जा रहा है और डिमांड भी है, और उसका कारण है हमारे तगाराम जी। और तगाराम जी, हम बात करें, आपकी बहुत मीठी एक मधुर ध्वनि है मेरे वतन के लोगों, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को सुना दें।

0: बहुत खूबसूरत। और देखिए तकाराम जी, आपकी ये ध्वनियाँ आपको उस ऊंचाई पर लेकर आई हैं जहाँ पर हर किसी की कामना होती है, और ये अलगोजा के माध्यम से आपको सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और आज हमारे श्रोताओं के सामने आपने इस अलगोजा की आपके बचपन से अब तक की यात्रा का पूरा वृतांत सुनाया, और मधुर मीठी ध्वनियाँ भी आपने हमारे श्रोताओं के लिए सुनाई, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो सम्मान मिला है और उसके लिए हम आपको बधाई कर देते हैं और आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राजस्थान दर्शन में पद्मश्री तगाराम भील से श्याम वीर सिंह की भेंटवार्ता। आकाशवाणी
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे जयपुर केंद्र से प्रसारित राजस्थान दर्शन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और समय है अब आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में पहला गीत सुनिएगा फिल्म नील कमल से।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म पुष्पांजलि से। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में था ये गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। ये गीत होगा फिल्म प्रेम रोग से।

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म हवस से। इसके साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन

का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।